और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

मूवी के नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नायती जी लता जी का ये जोन थे जिसमें दिलीप कुमार और शायरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शायरा मानू बहुत छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बिट जाएगा और 17 बस 52 में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

खूबसूरत है हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

और मैं पल दो पल का शायर शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

हाय जानी चमनी और तेरा गोरा गोरा बनन में क्या हलचल मच चुका है। ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिकर नाम है वक्त नहीं खतीन 165 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिंगेल नाइटिंगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत की ओर हम चलते हैं। न्यू निवर रे तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए परमा श्री मोहम्मद रफी और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरें अरे क्यों खफा हो गई हैं और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है

0: हेमंत दादा का ये मशहूर सॉन्ग है जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कभी न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको, वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

आपका हैप्पी स्टेशन फार होम हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। दिल मेरी ना सुने, कैसा दिल है ये दोस्तों।

ये कैसी बात है, जब दिल मेरा नहीं सुनता तो मैं दिल को क्या करूं। कभी कभी हो जाता है कि दिल बस में नहीं रहता है। दोस्तों, रब मिल गया फिल्म का सॉन्ग है, मोहम्मद इरफान।

हम अकेले इसलिए रहते हैं, हम अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको सबकी तरह झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं।

दिल सच्चा और चेहरा झूठा दोस्तों, ये तो एक फिल्म था ना, और आप जानते हैं हकीकत में कभी कभी चेहरा अच्छा होता है, दिल झूठा होता है। फिर भी ये फिल्म सच्चा झूठा जो है, ये फिल्म मनमोहन देसाई ने तैयार किया, जब तो शशि कपूर को लिया इस फिल्म में काम करने को, लेकिन शशि कपूर ने पूछा मेरा साथ किसने मेरे साथ एक फिल्म में काम करेगा, तो महेंद्र देसाई ने कहा मुमताज आपके साथ इस फिल्म में काम करेगा, तो शशि कपूर ने कहा नहीं नहीं दूसर एक्ट्रेस को ले लेना तो मैं इस फिल्म में काम करूँगा। तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कहा देखो शशि साहब, मैं दूसर डायरेक्टर बदल सकता हूँ, प्रोड्यूसर बदल सकता हूँ, गायक बदल सकता हूँ, मगर मैं मुमताज़ को नहीं बदलूँगा। तो जाकर रजेश खन्ना को लिया इस फिल्म में काम करने को दोस्तों, और रजेश खन्ना और मुमताज़ इस फिल्म बनाया और ये फिल्म एक हिट हुआ, एक जुबली हिट हुआ। तो शशि कपूर जब देखा कि ये फिल्म एक जुबली हिट हुआ तो शर्मिंदा हो गया और आगे चलकर फिर शशि कपूर मुमताज़ के साथ काम किया। इसी फिल्म का एक सॉन्ग सच्चा झूठा।

राजेश खन्ना और मुमताज का हिट फिल्म सच्चा झूठा का सॉन्ग अभी आपने किशोरदा की आवाज़ में सुना। हर एक काम जो आपको रेडियो को सिरे कराना है कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से नील सीफन तक 3 5 3 2 फिर सीफ पर आपको तार करना है।

लंबा लंबा गोरा गोरा अक्षय कुमार है दोस्तों, फिल्म रुस्तम का सॉन्ग जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया, अतीफ असलम और साथियों की आवाज़ में भी आपने सुना। फाहम हिंदुस्तान रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे, प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है दोस्तों, राजन के साथ। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, झूठा ही सही, क्या बात है दोस्तों, वो भी सही बात है, चाहे झूठे झूठे फिर भी प्यार कीजिए। फिल्म जॉनी मेरा नाम का सॉन्ग है जिसमें देवानंद हेमा मालिनी काम किया दोस्तों। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जब बना तो उस फिल्म में देवा और हेमा मालिनी भी था। इस फिल्म के बाद इन दोनों में प्यार हो गया, इन दोनों में प्यार हो गया और ताजमहल होटल में ये दोनों बैठ कर कुछ खा पी रहा था, तो वहाँ पर जाकर राज कपूर पहुँचा दोस्तों। राज कपूर थोड़ा से शराब पिया था और हेमा मालिनी के गाल छूने लगा वगैरह वगैरह, तो देवानंद गुस्से में आकर और हेमा को वहाँ पर छोड़कर और चला गया। ये भी होता रहता है।

चाहे झूठा ही सही फिर भी प्यार कीजिए, जिसका मुझे था इंतजार, फिल्म दोन का सॉन्ग है जिसमें अमिताभ और सिन्नत अमन ने काम किया। दोस्तों फिल्म जिंदगी जिंदगी, अपने पहले फिल्म जिंदगी जिंदगी के फ्लॉप होने के बाद 12 लाख कर्ज में डूबे हुए प्रोड्यूसर निर्मल ईरानी को सिन्नत अमन और अमिताभ बच्चन और चंद्र भारत, ये सभी ने एक नई फिल्म बनाने को साथ देने का मौका दिया। और कहानी इस फिल्म में कोई पैसा नहीं लेंगे, तो ये तीनों ने कहा कि ये कोई पैसा नहीं लेंगे अगर ईरानी जी एक नई फिल्म तैयार करेगा। अपने दोस्तों के सलाह पे निर्मल जी ने फिल्म बनाने के तैयार हो गए। अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन ये दोनों ने कहा कि फिल्म में हम लोग काम करेंगे और एक चीज पैसा नहीं लेंगे। तो उसी समय में सालिम और जीवत ये दोनों के पास एक कहानी था, एक फिल्म था जिसने खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो ये कहानी कुछ दूसरा कहानी नहीं था, ये था हिट फिल्म डॉन। तो ये फिल्म ईरानी जी ने ले लिया और ये फिल्म जोरदार से चला दोस्तों, और उसी साल का तीसरा हिट फिल्म निकला। ये फिल्म दोन जो था ये उस साल का तीसरी हिट फिल्म मिला और ये फिल्म 7 करोड़ 20 लाख रुपए कमाई थी। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रोड्यूसर कितना खुश होगा उस समय पर अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन दोनों के ऊपर। तो इसी तरह से ये फिल्म का गीत जो मैं पेश करता हूँ, इस फिल्म तैयार हुआ है।

यही तो प्यार है, दिल संभल जा सरा, दिल संभल जा सरा, फिर मोहब्बत करने चला। ये दिल जो है ये क्या संभलने वाला है, ये दिल जो है कभी नहीं मानता है, और दिल भी कभी नहीं भरता है।

ये दिल लिए दिल को चाहे मनाओ ये कभी नहीं मानते हैं दोस्तों, छूकर मेरे मन को किया तूने किया इशारा। अमिताभ बच्चन का फिल्म है और अमिताभ बच्चन दोस्तों एक बड़ा स्टार है, आज तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं और कई तरह के प्रोग्राम उसका भी टेलीविजन पे रहता है। तो अमिताभ बच्चन का उम्र फिर तक यार इस देश में बने रहो, 11 अक्टूबर 1923 तक में इनका पैदाइश हुआ और उसी का फिल्म का एक सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ और फिल्म याराना है और फिल्म याराना का गीत है छूकर मेरे मन को, किशोरदा के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

आफ्रिका हैप्पी स्टेशन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। अक्षय कुमार और करीना कपूर या करीना खान दोनों ने काम किया है फिल्म एक दिल रुबा है। पद्मसी उरित्रा इनके आवाज में आप गीत को सुनेंगे, दिल करता है तुझे अपना बना लूं।

ये दिल का कहानी, दोस्तों मैं दिल की कहानी नहीं लेके आया, मैं दिल का लय सभी ने बनाया, लेकिन हर एक गीत जो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो दिल आ जाता है। ये दिल पर क्या गुजरता है आप जानते हैं, और ये दिल जो है कभी नहीं मानते हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, ये दिल तो दिल है लेकिन कभी नहीं मानते, छोटा सा दिल है। जब प्यार हो जाता है तो चाहे प्यार मिट जाता है लेकिन ये बात दिल में जाकर समा जाता है और हमेशा के लिए दिल में रहता है, ये दिल से कभी नहीं निकलता है। दिल तो है दिल।

क्या चीजे, हम यार है तुम्हारे अलका याग्निक उदित नारायण, दोनों के आवाज में आप सुनेंगे हाँ मैंने भी प्यार किया। फिल्म का नाम है ट्वीट।

हाँ मैंने ही प्यार किया है। फाहोन हिंदुस्तान रेडियो, आप सुन रहे हैं राजन के साथ सासों की जरूरत है। आज की फिल्म का नाम है मिस्टर सानू।

0: सासों की जरूरत है आशिकी के लिए। ये आशिकी क्या होता है आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो कभी जब मैं शुक्रवार के प्रोग्राम करूँगा तो आप 4 और 5 के बीच तार करके और पूछ लीजिए, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आशिकी क्या है, क्या होता आपको मालूम है भैया जॉनी की आशिकी क्या है?
1: हाँ भैया, आशिकी बहुत खराब का बीमारी है।
0: पैरासीटामोल से अच्छा
1: है? पैरासीटामोल से अच्छा है भैया।
0: झारे के परी?
1: हाँ, अब देखो भाई, ये द्वारका बीते हुए दिनों में सुरीनाम देश में एक लड़की जब तक यार के यही आशिकी के पर बाद में फंस के और अपन वो तो जाए के कुरा थे जिस मक्का और वो तो ले आए के गिर गए पानी में, गिर ना गए सालों मोर ब्रेक करी so. तो ही बता ले आशिकी भैया द्वारका जान ले ले तो आप कभी किया होगा कि अभी करते होंगे?
0: ये काम तो किसने नहीं किया, सबको ये काम किया,
1: किया नहीं हो जाता है।
0: वो जैसे जैसे तू बोले एक बीमारी है आजकल।
1: हाँ, वो बीमारी है। हाँ। लोग भाई राजेश, दुनिया पे लोग को एक चीज से बहुत डरना चाहिए और वो है प्यार करना।
0: या
1: प्यार बहुत अच्छा
0: या प्यार हो जाता है,
1: प्यार हो जाता है।
0: या
1: बोले प्यार किया नहीं जाता है।
0: भैया जोनी, थैंक यू।

चार मिनट रह गया है 6 बजने में। प्रोग्राम यहाँ से मैं समाप्त करता हूँ, आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। मिस्टर जर्नी नंबर 1 आ गया स्टूडियो में, बगल में बैठा है दोस्तों, और अभी उसका प्रोग्राम 6 बजे से आप सुनेंगे। खास करके जो न्यूज़ ब्रेक था आप जरूर सुनते रहना। वीकेंड है, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। खुशबू रहेगा, फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा, फिर मिलेगा आप सभी को एक सुहानी रात।

जय श्री राम। राम के अनन्य भक्तों, प्रभु प्रेमियों, प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके गोपाल परदेसी बाबा की तरफ से राम राम। नाना प्रकार के राम अवतारा, रामायण सबको किए अपारा। भक्तों, जिस प्रकार समय समय से राम के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कल्पों में और अलग अलग लोकों में दुनिया में भी विभिन्न प्रकार से रामचरित्र का वर्णन किया गया है। इसी कारण तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के करोड़ों भक्तों में से राम कथा के प्रसिद्ध रचयिता कौन है? तो भक्तों, भगवान शिव ने इसे रचकर माता पार्वती को सुनाया, फिर भगवान से सुनकर ये प्रसिद्ध कथा काकभुशुंडी जी ने अपने पक्षियों के समूह में बैठकर गरुड़ जी को सुनाया। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया। सर्वप्रथम इस कथा की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की, तत्पश्चात समय समय पर अलग अलग भाषाओं के महान कवियों ने इस कल्याणकारी गाथा को अपने अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने अपने ढंग से गाया। रामायण में सबसे अधिक मूल्यवान यानी विशेष बात यह है कि इस कथा में श्री राम का चरित्र एक आदर्श मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसी कारण ये कथा मानव को सच्ची राह दिखाती है। भक्तों, इस राम कथा के द्वारा किस प्रकार समस्त प्राणियों ने अपने अपने धर्म अर्थात अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते जा रहे हैं। प्रिय प्रभु प्रेमियों, ये महान गाथा संप्रदाय और जात पात को ना देखते हुए हर प्राणी की आत्मा को छूती है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से धरती के प्राणों में शक्ति प्रदान करती है, हर युग में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव तभी मनाया जा सकता है जब हमारे मन में प्रेम, सच्चाई और विश्वास हो। ये राम कथा रस गंगा जहां भी बही, सबने उसका स्वागत किया, फिर चाहे वो धरती का कोई भी कोना क्यों ना हो। सज्जनों, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए श्री राम के प्यारे भक्तों, शुभारंभ करते हैं रामायण का प्रथम कांड।

परम वंदनीय है प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तगणों, कवियों के समाज में चंद्रमा के समान सुशोभित श्री तुलसीदास जी के अनुसार राम कथा सुंदर करतारी संशय वेहक उड़ावनहारी अर्थात प्रभु श्री राम जी के लीलाओं की गाथा अत्यंत सुंदर है एवं प्राणी मात्र की प्रत्येक शंका का समाधान करती है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री राम से बड़ा और कोई नाम नहीं है और श्री राम के कथा से बढ़कर पुण्य दायनी अन्य कथा नहीं है। आज आप और हम श्री रामायण के बाल कांड का रस स्वादन करेंगे।

शैल सुता पार्वती को जब तप करते हुए हजारों वर्ष बीत गए तब आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई अब शिव जी पति रूप में अवश्य मिलेंगे। और भक्तों उधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने भगवान शिव भोलेनाथ को पार्वती के साथ विवाह के लिए तैयार किया। इस प्रकार शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। अचानक पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे आदिदेव हे प्राणनाथ हे कृपा निधान मुझे उस नाम का रहस्य बताइए जिसका आप सुमिरन और

शिवजी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी वो कथा विस्तार से सुनाता हूँ जिसे काक मुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई थी। जगत प्रसिद्ध के कई देश में धर्म और नीति का पालन करने वाले प्रताप भानु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके भाई का नाम अरिमर्दन था एवं धर्म रुचि नाम का बुद्धिमान मंत्री भी था, परंतु विप्र समुदाय के श्रापवश उनको कुल समेत राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। ये तीनों ही क्रम से रावण, कुंभकरण एवं विभीषण के नाम से पुलत्स्य कुल में उत्पन्न हुए।

भगवान अग्निदेव ने यज्ञ से प्रसन्न होकर जो हविष्यान राजा को दिया था उसे खाकर तीनों रानियां कौशल्या, केकई एवं सुमित्रा गर्भवती हो गई। तीनों रानियां मन में बड़ी हर्षित हुई। भगवान जिस दिन से गर्भ में आए चहुं ओर हर्षोल्लास छा गया। इस प्रकार 9 माह बीत गए जब और वो समय आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। नक्षत्र योग लगन एवं वार सभी अनुकूल हो गए। पावन चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का अत्यंत प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना सर्दी थी ना गर्मी।

प्रभु श्री रामचंद्र जी के अतिशय प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न के चूड़ाकरण नामकरण उपनयन आदि संस्कार विधिवत किए गए। भगवान श्री राम जी ने अनेक प्रकार की मनमोहक बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। एक बार माता कौशल्या ने बाल रूप श्री राम को पलने में सुलाकर पूजा घर में ठाकुर जी को भोग लगाया तो उन्होंने बालक श्री राम को वहां भोजन करते देखा। माता पलने के पास गए तो शिशु को पलने में सोता देखकर विस्मित रह गए। भक्तों, इस प्रकार अनेक लीलाएं करते हुए श्री राम जी सबको विस्मित करते

महाराज दशरथ ने मुनिवर विश्वामित्र के सन्मुख हाथ जोड़कर जैसे ही कहा कि मुनिवर, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, ये चार पुत्र मैंने वृद्धावस्था में बहुत प्रयत्न से पाए हैं, आप इन्हें छोड़कर चाहे जो मांग लीजिए, चाहे मेरे प्राण मांगो, मैं सहर्ष देने को तैयार हूं। तो तुरंत ही विश्वामित्र जी क्रोधित हो उठे और राज सभा से उठकर चल दिए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शांत किया और राजा को समझाया कि राजन, राम लखन को आप मुनिवर के साथ भेज दीजिए। राम लखन कोई साधारण बालक नहीं है,

प्रभु श्री राम तो पृथ्वी पर नर लीला रचाने और राक्षसों के विनाश हेतु अवतरित हुए थे। अतः उन्होंने मारीच की मायावी शक्तियों को देखकर उसे बिना फर का बाण मारकर लंका भेज दिया, ताकि सीता हरण के समय वहां स्वर्ण मृग बनकर काम आ सके। इसके पश्चात महामुनि विश्वामित्र के पास मिथिला के महाराज राजा जनक के यहां से सीता स्वयंवर का समाचार आया। मुनि विश्वामित्र ने श्री राम और लखन को साथ लेकर मिथिला के लिए चल दिए। मार्ग में अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, जो श्रापवश पत्थर बनी थी, भगवान की चरण कमल पड़ते ही नारी रूप होकर अपने पति गौतम ऋषि के लोक में

श्री गंगा जी की पूजा अर्चना एवं स्नान करके मुनि विश्वामित्र आनंद कंठ भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी को साथ लिए जनकपुरी में पहुंचते हैं तथा वाटिका में ठहर जाते हैं। राजा जनक वाटिका में ही उनसे भेंट करने पहुंचते हैं। मंगलमूल श्री राम को देखकर जनक जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं तो मुनिवर श्री राम और लक्ष्मण का परिचय कराते हैं। लक्ष्मण के मन की बात जानकर प्रभु श्री राम गुरु जी से नगर भ्रमण की आज्ञा लेकर नगर के बाजारों में घूमकर आते हैं।

प्रभु राम के अनन्य भक्तों, राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजकुमार महादेव के धनुष पर प्रत्यांचा यानी धनुष की डोरी चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। और आज धनुष यज्ञ का वो पावन दिन आ गया है जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश देश से राजकुमार पधारे हैं। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी धनुष यज्ञ में आए। रंग भूमि की शोभा अवर्णनीय है। महाराजा जनक का मंत्री स्वयंवर में आए हुए राजाओं को राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनाई।

राजा जनक की शोक एवं व्यंग भारी वाणी सुनकर शेष अवतार लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले, हे महाराज, सूर्यवंशी वीरों के होते हुए धरती को वीरों से खाली कहना अनुचित है। यदि भैया श्री राम जी आज्ञा दे तो मैं विध्यांचल पर्वत को फूंक मारकर मच्छर के समान उड़ा सकता हूं। इस धनुष की तो बात ही क्या। तो भक्तों, तब मुनि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत करके श्री राम जी को कहा कि हे पुत्र, तुम उठो।

बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की जय जयकार से संपूर्ण ब्रह्मांड डोल उठा। नगर में बाजे बजने लगे। सज्जन लोग प्रसन्न एवं दुष्ट उदास हो गए। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। तभी शिव धनुष का टूटना सुनकर भगवान परशुराम जी रंग भूमि में आ पहुंचे। तन पर विभूति, विशाल ललाट पर त्रिपुंड, सिर पर जटा शोभायमान हो रही है। कांधे पर तरकस एवं एक हाथ में सुंदर फरसा धारण किए हुए हैं। सबने मुनिवर को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया एवं मुनि विश्वामित्र गले मिले। तब

शांत होने का नाम नहीं लेता। जब श्री राम जी ने शीश झुकाकर हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा कि हे देव, हमारा सिर तो सदैव आप ही के चरणों में रहा है, आपके चरण हमने छाती पर लिए हैं, ये कहकर श्री राम जी ने परशुराम जी को उनके पूर्वज भृंग ऋषि जी का पद चिन्ह अपने हृदय पर दिखाया। तब परशुराम जी समझ गए कि ये तो स्वयं श्री नारायण है। तब उन्होंने बारंबार श्री रामचंद्र जी की वंदना और तप करने के लिए वन की ओर चले गए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की।

प्रभु श्री राम जी के भक्त जनों, इस प्रकार श्री राम जी और जनक दुलारी सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। बारात जिस समय अयोध्या वापस आई तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया। माताओं ने सीता सहित चारों बहुओं की आरती उतारी, मंगल गान हुए। राजा ने बहुमूल्य हीरे मोती स्वर्ण गौ आदि दान किए। प्रभु प्रेमियों और श्री राम जी के भक्त जनों, जो भक्त प्रभु श्री राम जी के बाल चरित्र एवं विवाह गाएंगे अथवा सुनेंगे, उनके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद होगा। बोलिए मर्यादा पुरुष।

प्रेमी भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल लीलाओं का प्रथम कांड जो बाल कांड के नाम से प्रसिद्ध है यहां समाप्त हुआ और अब आप दूसरा यानी अयोध्या कांड सुनिए।

चार वर्णों और आश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, और जो कर्तव्य से गिरा हुआ होता है वो छोटा हो जाता है। आइए इस भजन के माध्यम से सुनिए।

परमात्मा सब देश काल आदि में परिपूर्ण है। संसार के सत्यता मानने से ही मनुष्य परमात्मा से दूरी का अनुभव करता है।

नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों के सेवा में मैं संजय आपके साथ इस समय जुड़ गए हैं। और यही आशा लेकर कि कुछ समय आपके साथ व्यतीत करेंगे।

नहीं है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई दिया जाता है। इस परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है तो परिवार को बहुत से बधाई दिया जाता है। जो अपने नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं तो उनको भी फाइन दाखतु कवेंस एंड फेल वर्क प्लसीर। जो अपने तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए यानी कि अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए तो माँ सरस्वती को आपको नहीं भूलना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

andere deze mee sefer saai he toon he van harte welkom en een fijne vakantie toegewenst. Ye aisa dese jahan sundarta jo dekhne ke liye duniya se har ek prant se log yahan aate hain. सिर्फ मशहूर है म्यूजियम से जहां कुंस्ट एंड कल्चर के लिए लोग यहां तक आते हैं पर यहां देखने के लिए काफी चीजें हैं काफी जगहें हैं और यह बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में भी मंगलवार रविवार बृहस्पतिवार और कौन-कौन दिन से और मंदिरों को लगाया जाता है हालांकि अलग-अलग शहरों में पर फिर भी रोटरडम डेन हाग अलमेर आरनहेम एम्स्टर्डम फ्लारनिंग क्रिम्पन ऑन द एसल इसी प्रकार से अन्य-अन्य स्थानों पे आप गूगल महाराज से संपर्क करें अगर मंदिर का दर्शन करना है भगवान को दर्शन करना है तो आपके लिए हॉलैंड में भी मंदिर लगाया जाता है देखा जाए कि डेन हाग में खासलान 74 से जो देव मंदिर लगाया जाता है जो 2 बजे से 5 बजे तक हर रविवार को डेन हाग में श्री राधे कृष्ण मंदिर जो हर मंगलवार को 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है इसी तरह से सुतमेर में मंगलवार को 6 बजे से हल्फ नहीं खतक रात्रि का कार्यक्रम और खास करके अल होखते दाख को मंदिर लगाया जाता है इसी प्रकार से जो अलमेर उस तरफ रहते हैं तो शायद आप कभी नहीं गए होंगे तो गोल्डन टेंपल यानी कि विष्णु मंदिर जो अलमेर शहर अलमेर बेल्ट में है वो 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है हर रविवार को रोटरडम में भी राम मंदिर इसी तरह से हॉलैंड में मंदिर का कमताई नहीं है सुनो लो हम पहला भजन की ओर बढ़ेंगे

जिनके हृदय श्री राम बसे, ये गीत जो मुकेश जी के आवाज में हम सब सुने और नई हतीन ससन सईफ अंतक में उन्होंने इस गीत को यानी ये भजन को गाए है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।

कि अंतर आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करे, क्योंकि ये अंतर आत्मा ही है जो हमारी वास्तविकता भला भांति जानते हैं।

जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती है तो उम्मीदें, भावनाएं, आशाएं और भरोसा।

का एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए और मन में ये रखे कि अगर मैं जीत गया तो प्रभु मेरे, और अगर मैं हार गया तो मैं प्रभु का। तो ये हार जीत का संदेश कि अगर मैं हार गया तो, और अगर मैं जीत गया तो, सुनने वालों हम एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

कहना जहां मैं गलत हूं वह राह दिखाओ, लेकिन जहां मैं सही हूं वहां मेरा साथ निभाओ।

कि अनंत प्रेम के मोती राधा, फूलों का खुशबू है राधा, नदियों का धारा है राधा, मोहन को मोह लेती है राधा।

कृष्ण प्रेम में तपती राधा, श्याम के मन में बसती राधा, वृंदावन की हस्ती राधा, महारास की जान है राधा, मिश्री से भी मीठी राधा, श्याम चंदा तो चकोरी है राधा।

वंशीवट की छाया है राधा, मुरली की हर धुन है राधा, प्रेम का हर कन कन है राधा, मोहन की मन मित है राधा। सूरज की किरणों सी राधा, आधी कृष्ण आधी राधा, गोविंद का आधार है राधा।

स्वस्ति मेहुल के आवास में हम ये सुंदर सा भजन को सुने। कहते हैं कि कन कन में कृष्णा बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। सुनवाना सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। कहना चाहूंगा कि श्रीमान खेमराज जी ने एक अच्छा संदेश को भेजे हैं। Het leven is een cirkel van geluk, verdriet, moeilijke tijden en gelukkige tijden. Als je een moeilijke tijd doormaakt, onthoud dan dat er vredige momenten zullen komen. श्रीमान खेमराज जी ने ये संदेश को भेजे। अन स्क्राइबर फिलोसोफ, जो धर्म के बारे में भी काफी लिखते पढ़ते हैं।

श्री राधे। पुराणों में राधा नाम की महिमा का बखान बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया है। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये एक महा मंत्र कहा गया है।

इस नाम का जप यदि पूर्ण भक्ति भाव से करे तो स्वयं भगवान कृष्ण भक्तों के अधीन होकर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं।

जाता है कि राधा नाम के जप से भक्त को शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों की प्राप्ति होती है।

पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि श्री राधा रानी जी का चरणों के रज को पाने के लिए खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ललायत रहते हैं।

सुंदर सा भजन राधा रानी के अंतर्गत काफी संदेश इस भजन में जो रखा गया गोपाल कृष्ण तिवारी के लिखे गए ये सुंदर सा भजन और अपना आवास दिए है गौरांगी अरोरा जी, नंद रानी गोपी जी और नंद किशोर निमई जी।

सच्चे शांति। सच्चे शांति वहां है जहां इच्छाओं का अंत होता है। ईश्वर जी ने ये सुंदर सा संदेश भेजे है। ईश्वर जी आपको बहुत सा धन्यवाद। और दूसरा संदेश आपका मैं जरूर रखने की कोशिश करूंगा कि मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसे मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमें ये सिखाया गया था बचपन में कि बोया पेड़ बबूल का तो आम के प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। ईश्वर जी के ओर से ये सुंदर सा संदेश। अगर आप ये संदेश में कुछ भी ध्यान देते हो तो जरूर आज एक ऐसा दिन बनाइए, ऐसा वृक्ष को और बोइए जिसे आपके लिए आगे में जाकर मीठा फल को प्राप्त कराए।

मस्त रहे। एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। हम कार्यक्रम का रूप कुछ बदल देते हैं और आपके साथ अभी जुड़े रहेंगे।

सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत का मांग करने वाले श्रीमान रबीन जी जो फैखल से ये कार्यक्रम को सुनते हैं और इस बात को कहते हैं कि मैं हूं ना, ये तीन छोटे छोटे शब्दों से जुड़े हुए कि मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं। सुनने वालों, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये फाहून हिंदुस्तानी रेडियो है, इंटरनेट द्वारा आप दुनिया के हर एक प्रांत में सुन सकते हैं और अगर आपके पास भी कोई संदेश है तो जरूर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम कोशिश रखेंगे कि आपके जो संदेश है हम यहाँ से सुना सके। हम अगला सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और जैसे कि रबीन भाई जी ने कहा है कि ओल्ड इज गोल्ड, तो क्यों ना एक और पुराने गीत की ओर बढ़ते हैं।

ओल्ड इज गोल्ड कहा गया है ये सुंदर सुंदर गीतों को, और आज मैं उसी के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। भाई रामेश्वर जी ने संदेश को रखे हैं और संदेश का बोल ये है कि सीमेंट, जिसे हम सीमेंटी कहते हैं, सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नंबर यानी कि द क्वालिटी होना जरूरी है, और जुड़े रहने के लिए सख्त होना भी जरूरी है। तो ये सुंदर सा संदेश है जो हमारे लिए और भेजे भाई रामेश्वर जी, धन्यवाद हो आपको। हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और गीत का बोल, गीत जो निकाला गया फिल्म एक फूल दो माली नेखती नेखन शस्त्र से, और जो बनाया गया पिक्चराइज किया गया फिल्म

ये सुंदर सा प्यार भरी गीत को हम सुने सुनो लो। ये भी कहा जाता है कि बस अपना प्यार में फंसे मत रहना, और ये भी सुन लेना कि माँ का प्रेम वह अमृत है जिसको पाने के लिए स्वयं परमात्मा भी तरसते हैं। तो क्यों ना एक वैसा गीत हम सुने।

ये सुंदर सा गीत जो सुनाया गया सभी माताओं के लिए, जो आज कितने माताएं हैं जो अकेले घर से और बैठे हुए, ना कोई बच्चे उनके पास, ना कोई रिश्तेदार उनके पास। प्रकृति ये हमें सिखाते हैं कि पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देता है, वे तो बस उसे उड़ने की कला सिखाते हैं। इसी तरह से हम मनुष्य को भी, हम लोगों को भी ऐसे, हमारा जब जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमारे सेवा करते हैं, हमारे और पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और एक न एक दिन हम उड़ जाते हैं और बाकी बचते हैं घोंसला में कौन, कहीं माता है कहीं पिता है, और एक न एक दिन फिर वापसी हो जाता है। तो जिंदगी में ये जरूर हमें जानना चाहिए, जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाइए, रोज कुछ अच्छे याद रखे और कुछ बुरे भुला जाइए।

दोस्तों सुनने वालों, पा लेने का बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही है जिंदगी का सफ़र।

जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो पल, वो फिर कभी नहीं आते हैं, वो फिर कभी नहीं आते हैं। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोगों दुकानों में नहीं नसीब से मिलते हैं।

दोस्तों सुनने वालों, ये भी हम जाने कि सब्र में वो ताकत है जो सताने वाले को भी बुनियाद तक हिला देता है।

ठाकुर जी की ओर से ये संदेश भेजा गया कि उन्हीं यादों को सहेजिए जो आँखों में चमक पैदा करे, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करे।

ईश्वर जी का ये संदेश मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्हीं यादों को सहेजिए जो आंखों को चमक पैदा करे, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करे।

सुनने वालों, ईश्वर जी ने एक और संदेश को और रखे हैं, हम उसे भी आपके लिए और सुना देते हैं कि साथ समय और समर्पण दुनिया का सबसे अच्छे भेंट है। तो ईश्वर जी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा सुंदर सुंदर और संदेश को हमारे लिए भेजते हैं।

एक सुंदर सा दिन आपको होए और कहते हैं कि एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब, एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब, कोशिश रहे कि कहानी अच्छे हो।

बस यही है जीवन, रिश्तों को कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सुखी पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। तो दोस्तों, इन बातों पे ध्यान देते हुए एक शुभ दिवस आपको प्रस्तुत किया जाता है और एक और सुंदर सा ओल्ड इस गोल्ड, जो पुराने गीत के ओर हम प्लेयर पे चुन करके रखते हैं।

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, और ये हम जाने कि दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है। इसीलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का।

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, और अकेले होने से इस ज्ञान को प्राप्त हुआ कि अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से जीवन भर टिकते हैं।

जीवन में भी कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं। और ऐसा भी है कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं।

क्यों ना कोई सराहना करे या निंदा, लाभ आपका ही है। कारण यह है कि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। तो क्यों ना हम एक सुंदर सा ओल्ड इज गोल्ड आज उसी मूड में हूं।

सुनो लो, हम सभी मुसाफिर होते हैं और कहते संबंध अगर हृदय से हो तो मन कभी नहीं भरता है।

दोस्तों, सुनने वालों, ये गीत, सुंदर सा गीत जो किशोर कुमार जी के आवाज़ में, कि मुसाफिर है हम यारो, इसी पे कुछ और जोड़ दिया जाता है कि हम जब इस बात को जाने कि पिता कभी नहीं कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, और माँ ने कभी नहीं कहा कि मेरा तबीयत खराब है, इन्हीं दो झूठ की वजह से आपकी दुनिया सुंदर बनी हुई है। तो आज अपने समय निकाल करके क्यों ना अपने माँ को हम फोन करते हैं, अपने पिता को फोन करते हैं जो आज है इस दुनिया में, क्योंकि हम भी हैं मुसाफिर और एक ना एक दिन तो वापसी है हम सभी का।

दोस्तों, इस बात को हम भी जाने कि क्रोध और आंधी सामान्य है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है।

जिन रिश्ते के लिए रोते हो वो तुम्हारे पूरे जलने तक भी नहीं रुकेंगे। संतुष्ट रहना सीखो। संतुष्ट रहना सीखो, जितना मिला है पर्याप्त है।

दोस्तों सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और यही आशा रखता हूं कि जितना देर तक हम कुछ पुराने गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहे और आपको जरूर कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा लगा होगा। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए हमारे कोलेखा साथी जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार, विश यू अ प्लेजेंट डे।

0: శుక్రటుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభ నిర్విధినం కురుమె దేవా సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరూ మిల్నే కా మౌకా నహీ మిల్ పా రహా అథ శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసీ నా కిసీ రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హే ఇసీలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠా కో హృదయ సే నమస్కార్ కర్తా హూ దోస్తో యే హే ఫాహున్ హిందుస్తానీ రేడియో ద్వారా హమ్ సబ్ कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। शांता जी से आग्रह करूंगा कि पहले कुछ कहे, फिर बबली जी भी उपस्थित हो गए स्टूडियो में, फिर उसके बाद में राजेंद्र जी हम सबको कुछ कहने वाले हैं, और उसके बाद में विवान जो योंग्र के लिए भी यहां पर बैठे हुए हैं।
1: रिश्ता निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, रिश्ता निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, बस दिलों में प्यार चाहिए, उसको निभाने के लिए आपको अभी से शुभ महासंक्रांति कहते हुए स्वीकार कीजिए शांता की प्यार भरी राम राम नमस्कार प्रणाम और ज्योति का प्रकाश के प्रोग्राम। आप सभी को स्वागत कहते हुए और हार्दिक से भी बधाई है।
2: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को बहुत मुबारक, उनको जो हमको इस प्रकार से प्यार से सुनते हैं और अपना समय सुनने में और कुछ सीखने में भी रेडियो के माध्यम से लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आज की हमारे बीच में यंगरा के लिए। विवान जी हैं, बबली जी उपस्थित हुई हैं कुछ अपना कार्यक्रम के साथ में, और शांता जी और संजय जी और मैं तो हर बार रहते ही हैं। और आज का जो विषय है वो है पौष मास के व्रत और त्यौहार में जो मेन विषय एक मकर संक्रांति का त्यौहार है। मकर संक्रांति जो होती है, इस दिन पौष माह के महीने में इलाहाबाद में माघ मेला लगता है। क्यों ना बबली जी कुछ कहना चाहे, इसके बाद हम जो उदास बैठे हैं उनकी उदासी दूर की जाए।
3: मेरी ओर से सुनने वालों को नमस्कार। लोहड़ी का त्यौहार है तो उसके उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी।
2: हाँ, थोड़ी देर में बताना है, केवल आपका नमस्कार अभी है, इसके बाद एक वर लोहड़ी का जो त्यौहार है वो भी बहुत ही फेमस त्यौहार है भारत में। उस दिन खूब ढोल नगाड़ी और लोहड़ी जलाई जाती है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। बबली जी लोहड़ी का कार्यक्रम करेंगे, हम कल के लिए करेंगे, और संजय जी और विवान जी भी हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विवान जी
4: सबको नमस्कार।
2: तो क्यों ना उदासी मन के लिए उदासी दूर की जाए। संजय जी

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। तो राम जी तो सबका बेड़ा पार करते ही हैं, उदासी मन नहीं होना चाहिए। हाँ तो तब तक हम बात कर लेते हैं, आज का जो विषय था उसकी ओर बढ़ते हैं।
1: पर यहाँ पर ये बात हो जाता है कि ये कार्यक्रम के लिए जो हमारे विशेषज्ञ जो है, जिनका हम सब बहुत धन्यवाद कहते हैं, भाई संजय शर्मा जो पहाड़गंज से, भाई रिंकू कालिया जी जो मोहन गार्डन से, जो बजरंगी सेना का सभापति है, और श्रीमती रत्ना जी जो दनहाग से, हम सब के लिए जो विषय को खोज खोज करके रखते हैं, तो हम सब बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि जो हम सब के लिए ऐसा, क्योंकि कार्यक्रम के बनाने के लिए हम सब तो यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित होकर के और हम सब अनाउंस यानी कि कार्यक्रम को बना देते हैं, पर जो तेईमा होते हैं ना, तो ये तेईमा खोज खोज कर हम सब के लिए रत्ना जी, संजय शर्मा जी और रिंकू कालिया जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसे हम सब के इस कार्यक्रम में ज्योति का प्रकाश में अपना सहयोग दिए हैं। ख़ास करके हमारे जो टीम है, जो हवांत में जो हम लोग यहाँ दनहाग से इसको प्रेजेंटेयर करते हैं, तो अभी उसके बारे में बातचीत होने वाले है। पर बबली जी आप कुछ कहने वाले थे।
2: हाँ जी जरूर, मैं आज लोहड़ी के बारे में कुछ कहने वाली थी, लोहड़ी का त्यौहार।
1: क्योंकि बबली जी लोहड़ी साल में कई बार होता है?
2: एक बार।
1: और साल का ये लोहड़ी होता है एक ही दिवस के होता है, ये बदलता नहीं है?
2: नहीं, ये तारीख बदल जाती है, कभी 12 को आती है, कभी 13 को आती है,
1: पर उसी आसपास में।
2: हाँ जी हाँ जी,
0: 13 को ही ज्यादा करके मनाया जाता है,
1: 13 को। तो उसके अंतर्गत में आप कुछ सुनाने वाले हैं।
2: हाँ जी, लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति, ये तीनों त्यौहार इकट्ठे आते हैं। लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है, पोंगल साउथ में मनाया जाता है, और मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है।
1: तो राजेंद्र जी, क्योंकि लोहड़ी अभी बबली जी कहने वाले हैं, लोहड़ी के बारे में काफ़ी जानकारी मेरे ख्याल से लेकर आए हैं, पर हमारा मन में ये है कि जैसे कि हम सब कार्यक्रम में उसमें जोड़ देते हैं गीत,
0: हाँ,
1: तो क्यों ना पहले हम अपने लोहड़ी के अंतर्गत में थोड़ा गर्म हो जाते हैं।
0: जरूर।
1: पर बबली जी उंगली उठा दिया है कि पहले कुछ कहना है।
0: हाँ,
2: गीत से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ।
0: बोली।
2: मूंगफली की खुशबू और गुड़ की मिठास, मक्के की रोटी और सरसों का साग, दिल की खुशी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्यौहार।
0: तो इसी बात पे,
1: और ये भी आशा रखता हूँ मूंगफली और यानी कि गुड़ का वो सब आज हम लोग को मिलने वाला, मेरे ख्याल से
0: मिलने वाला।
1: तो चला देते हैं।
0: जरूर।

0: गाना ख़त्म और ये गीत बड़ा सुंदर रूप से हम सब के वो स्फीयर क्लियर किया कि अभी हम अपने विषय की ओर भी बढ़ेंगे, पर विषय में ये भी जोड़ दिया गया है आज। और लोहड़ी के अंतर्गत ये लोहड़ी क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और इसका मूल्य बात क्या क्या है, उस अंतर्गत में बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं।
1: बबली जी इसमें एक्सपर्ट है, बबली जी जरूर बताइए।
0: बबली जी आपके लिए माइक्रोफोन जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आपके लिए, तो राजेंद्र जी जरा से माइक ऑन हो गया है और आप लाइव है जो इस समय फाहून हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा से 188 देशों में सुना जा सकते हैं। तो हम सबको बताइए कि लोहड़ी क्या है और उस अंतर्गत में।
2: लोहड़ी का त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है।
0: पंजाब में?
2: हाँ जी हाँ, क्योंकि वैसे तो सभी मनाते हैं लेकिन पंजाबियों का त्यौहार है, क्योंकि जिस लड़के की शादी हुई हो वो पहली बार ऐसे धूमधाम से धूम धड़क्के से लोहड़ी मनाते हैं।
0: ऐसा?
2: हाँ, और जिनके पहले बेटे के बेटा हुआ हो यानी पोता हुआ हो वो लोग भी बड़े धूम धड़ाके से लोहड़ी मनाते हैं।
0: खूब धूम धड़ाके से लोहड़ी मनाते हैं।
2: हाँ जी।
0: और इसमें ये सिर्फ एक त्यौहार है जो जिसके घर पे नया परिवार आया है और जिसका विवाह हुआ है उसके लिए, या कुछ और है इसमें कि कैसे मनाया जाता है, क्योंकि ये ठंडी समय चल रहा भारत में।
2: ठंडी समय भी है और वो इसीलिए कि इसमें थोड़ा खाने का भी आ जाता है। ठंड में कहते मूंगफली खानी चाहिए।
0: मूंगफली बोले तो?
2: पिंडा।
0: पिंडा। और
2: रेवड़ी खानी चाहिए।
0: रेवड़ी बोले तो?
2: रेवड़ी मैं नहीं जानती कि क्या कहते हैं।
0: शांता जी आपको पता है रेवड़ी क्या?
1: मैं तो पहली बार सुन रही हूँ रेवड़ी क्या है।
0: तो हमारा
2: चीनी के ऊपर तेल लगा होता है। हाँ। उसे रेवड़ी कहते हैं।
0: सेसम कुकीज जो अभी आपने अभी राजेंद्र जी हम सबको खिलाए।
2: हाँ जी, और पॉपकॉर्न भी होते हैं।
3: नहीं, रेवड़ी दूसरा।
0: रेवड़ी तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए राजेंद्र जी, क्योंकि अभी तो हमने खा लिया और अच्छा लगा, बड़ा स्वादिष्ट था।
3: चीनी को घोल के फिर उसमें तिल लगाए जाते हैं, बाहर से
0: तिल लगाया जाता है
3: तो उसको रेवड़ी बोलते हैं। मीठी होती है और जो हमने अभी खाया है वो रामदाना का बनता है।
0: रामदाना गुड़ के साथ।
3: हाँ।
0: रामदाना जो गुड़ के साथ। तो हमारे सुनने वालों जो इस समय सूरीनाम में सुन रहे हैं, देन हाग शहर में सुन रहे हैं और ख़ास करके लिख्तफोर्द शहर से सुन रहे हैं, तो बोले रामदाना तो उसके मतलब क्या है?
3: एक मारसा बोलते हैं उसको, छोटा छोटा एक दाना होता है जिसको फुला के उसको गर्म उसमें तवा पे, वो तवा नहीं कढ़ाई में गर्म करके उसमें डाल दिया जाता है। जैसे उसमें गर्म पे पड़ता है एकदम फूल जाता है। जब फूल जाता है तो उसको गुड़ के साथ उबाल के गुड़ को मैश करके और पका के गुड़ को फिर उसके साथ मिला के फिर उसको लड्डू बनाया जाता है। ये तो पट्टी बनाई जाती
0: है। पट्टी कहते हैं इसे, फ्लैट।
3: फ्लैट
0: जैसे कि हम लोग के जो हमारे घर पूजा आदि होते हैं तो जैसे रोट वैसा।
3: वैसा
2: रोट तो आटे का बनता है, वो तो पिसान का बनता है।
3: सपाट।
0: सपाट। और
2: ऐसी एक गच्चक भी होती है।
0: गच्चक, तो गच्चक क्या चीज है?
2: वो गुड़ की भी बनती है, चीनी की भी। वो भी ऐसी जैसे बताया अभी मास्टर जी ने।
0: तो मास्टर जी ने इस बात के हम सबको और बता ही दिया है कि गुड़ और के कैसे ये इन चीजों पर। अगर राजेंद्र जी, क्योंकि हम रह रहे हॉलैंड देश में, ये कार्यक्रम चल रहा है हॉलैंड देश से। हॉलैंड देश में कहावत है कि चाहे मौसम गर्मी हो या ठंडी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, पर यहाँ जब चाहो तब ऋतु फल का इंतजार करना नहीं पड़ता है। तो ये एक देश से स्वर्ग की तरह, और हम सब जब चाहे तो उसे भी खरीद जरूर सकते होंगे कहीं। तो यहाँ हॉलैंड में मिल जाता है वो।
3: मिल जाता है
0: रेवड़ी।
3: रेवड़ी
0: और
3: गजक।
0: गजक। तो हम सब
3: और तिलपट्टी।
0: और पट्टी।
3: तिलपट्टी।
0: तिलपट्टी।
1: तिलपट्टी।
3: मूंगफली पट्टी। तिलपट्टी।
0: तो बबली जी कुछ कहने वाले।
3: हाँ, बबली जी शुरू करिए।
2: मैं त्योहार के बारे में बता रही थी कि लोहड़ी में लोग रात को इकट्ठे होते हैं और आग जलाते हैं।
0: आग जलाते हैं जैसे कि
2: हाँ, जैसे ठंडी का मौसम है तो ठंड। हाँ, है भारत में।
0: हाँ जी।
2: तो आग भी सेकते हैं और साथ में रेवड़ी मूंगफली ये चीजें खाते हैं और अपना त्योहार मनाते हैं।
0: वो रात में आग लगाया जाता है।
2: हाँ,
0: तो आग लगाकर उसका
2: चक्कर भी लगाते, पहले शगुन करते हैं, पूजा करते हैं, पहले
0: पूजा करते हैं।
2: हाँ, पूजा करके फिर सब में ये प्रसाद बांटते हैं।
0: तो प्रसाद बांटते हैं।
2: हाँ, फिर गीत गाते हैं, भांगड़ा करते हैं, नाचते गाते हैं।
0: गीत गाते, भंगड़ा करते, नाचते गाते।
2: हम भी बचपन में
3: गीत बोली जी, बताइए जरा।
0: बता दो भंगड़ा।
2: भांगड़ा होता है, अरे ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, उसके ऊपर
1: डांस करते
2: हैं। हाँ जी,
3: भांगड़ा एक पंजाबियों का डांस होता है।
2: पंजाबियों में दो डांस है, एक भांगड़ा आदमी लोग करते हैं, गिद्दा औरतें करती हैं।
0: गिद्दा औरतें करते हैं।
3: हाँ, गिद्दा कैसे करते हैं, करके आप एक बार दिखाएंगे।
0: तो यहाँ हमारे सभी सुनने वालों दर्शकों ये सुनने वालों के समझ में जरूर आ जाए, आ गया होगा। पर और कुछ कहने वाले आप?
2: बचपन में हम भी एक गाना गाते थे,
0: ये लोहड़ी का।
2: हाँ जी, तो बच्चे थे तो बच्चे लोहड़ी मांगने जाते हैं, तो जैसे यहाँ पर कौन सा त्योहार होता है,
0: कौन सा त्योहार होता है शांता जी, जहाँ
2: बच्चे टॉफी चॉकलेट मांगते हैं?
0: विवान को पता होगा,
4: हैलोवीन।
0: तो जैसे हैलोवीन के तरह, जैसे विवान कह रहे हैं, वहाँ आप जा करके और घरे

0: क्योंकि अभी तो
1: बहुत ही बढ़िया बबली जी ने अभी जो सुंदरी वाला गाना बनाया है, सुंदरी मुंदरिया वाला मीट कॉर्स ने गाया है, और ये बहुत ही अच्छा है। क्यों ना हम भी इस गाने को यहाँ
0: चला देते,
1: चला दिए जाए।

0: तो ये बात हुआ ना, सुंदर गीत जो हम सब सुने, और पर राजेंद्र जी मैं तो कुछ समझा नहीं गीत में।
1: गीत में आप अगर नहीं समझे तो बबली जी से समझ लो।
0: बबली जी, इस गीत का और संदेश जो है ये तो मैं जरूर समझ गया, क्योंकि ऐसा हुआ राजेंद्र जी, एक बार मैं कहीं पे और कुछ पढ़ रहे थे, तो गोरे लोग थे ना, तो कुछ रिलीजी के बारे में बात हो रहा था वहाँ, और हम कह रहे थे, तो वो व्यक्ति बड़ा आराम से बैठ के सुना, और तब हमने जब सब समाप्त हो गया तो हमने उसके पास गए और कहने लगे कि भाई मैं तो कुछ कह रहा था पर हमारे ज्ञान उतना बड़ा नहीं कि हम उसे और समझा सकते हॉलैंड डच भाषा में। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें उसका चिंता नहीं है, हम ये जरूर जानते हैं कि आप जो कुछ कह रहे थे तो ठीक ही होगा। तो यही हुआ कि अभी हम सब, ये कौन भाषा में बबली जी, कौन भाषा में ये गीत गाया गया?
2: ये पंजाबी भाषा में गीत है।
0: ओ, पंजाबी भाषा में ये गीत गाया गया, और ये मेरे ख्याल से पूरा वृतांत जो कि लोहड़ी के अंतर्गत में और सुनाया गया है।
2: लोहड़ी के अंतर्गत भी है, और सुंदरी मुंदरी दो बहनें हैं, और उनका रखवाला है, उनका भाई, उसका नाम था दूल्हा पट्टी वाला।
0: दूल्हा पट्टी वाला,
2: हाँ जी।
0: ऐसा
2: तो कहते सुंदरी मुंदरी हो तेरा कौन बचा रहा है, कि तुमको बचाने वाला कौन है, वो कहते दूल्हा पट्टी वाला है।
0: ओ, तो हमने तो सोचा दूल्हा की जो शादी वाला दूल्हा।
2: नहीं, उसका नाम ही दूल्हा पट्टी।
0: दूल्हा पट्टी वाला,
1: दूल्हा पट्टी उसका नाम रहे।
0: ओ, ऐसा हुआ। बबली जी, इसमें और कुछ संदेश है, ताकि हम सबको भी ध्यान देना है, समय के और बढ़ना है, पर संदेश सुना दीजिए।
2: हाँ जी, जरूर। इसमें ये है कि साग और मक्की की रोटी खाते हैं।
0: साग बोले तो,
2: साग जैसे पिनासी,
0: स्पेनासी,
2: हाँ, और पांच छह सब्जी और मिला के,
0: हाँ,
2: भाजी,
0: हाँ जी,
2: उसको साग कहते हैं।
0: ओ, मिलावट कहते हैं, यानी कि ब्लत खुरुंतक।
2: हाँ, जितनी भी खुरुंतन है पांच छह। अब हाँ, आपको नाम तो पता नहीं होगा, इंडिया में उसको कहते हैं पालक, सरसों, मेथी, ऐसे
0: ऐसे ऐसे मिला के तो सब
2: साग बनता है।
0: साग बनता,
2: हाँ, रात को बना के रखते हैं, और अगले दिन मकर संक्रांति के दिन उसको खाया जाता है, और उसे शुभ मानते हैं। और मक्की की रोटी,
0: मक्की,
2: मकई,
0: मकई की रोटी।
3: राजेंद्र जी, बबली जी आज बनाई से पानी पूरी और
2: दही भल्ले, पापड़ी,
3: पापड़ी,
1: ओ दही भल्ले पापड़ी,
3: भल्ले पापड़ी।
0: तो पानी पूरी, शांता जी इस पे बताइए कि आप पानी पूरी आज कुछ प्रयोग किया कि नहीं?
3: हाँ, हमने तो इतना सारे खाए कि हमारे पेट
0: और स्वादिष्ट था।
3: बिल्कुल बिल्कुल, सालों के बाद हमने आज पानी पूरी खाई, जो बबली अपने हाथ से प्रेम से प्यार से हम सब मिलजुल कर बनाई है, और यहाँ पे हम थोड़ा
0: शांता जी,
3: हाँ जी,
0: ये पानी पूरी का और एक फिल्म आया था ना हॉलैंड में, बनाया गया क्वीन कंगना का, इंग्लैंड में शुरू हुआ वो फिल्म, और जो अलग अलग देशों यूरोप में जा कर के उन्होंने बनाए, तो यहाँ पर आकर के क्वीन जो है
3: ये,
0: तो उसका एक टुकड़ा बनाया गया फौलंदाम शहर में।
3: अच्छा,
0: तो फौलंदाम शहर में उस टुकड़ा को बनाया गया, तो उसमें खास करके रखा गया कि और जा कर के कंगना उस फिल्म में बनाते हैं पानी पूरी।
3: अच्छा,
0: तो गोरे को खिलाते हैं, और यहाँ पर जैसे आज हमने खाए तो पानी पूरी थोड़ा तितलुस भी होता है।
3: हाँ,
0: और गोरे लोग तीता यानी कि तीखी नहीं खाते, तो शुरू शुरू में उनको लगा कि क्या खिला दिया हमें, पर बाद में जब थोड़ा से दूर चल के गए तो उसका स्वाद जो बाद में मिला, तो वो लौट करके दोबारा आ करके और खूब पानी पूरी खाया। और इस बात पे मैं कहना चाहूँगा कि मेरा भी, मुझे नहीं पता कितना बार मैं इंडिया गया हूँ, पर जय बार इंडिया गया हूँ तो वही के पानी पूरी के स्टैंड से मैं पास होता हूँ। और वैसे तो कितनी फिल्मों में ये पानी पूरी के अंतर्गत बातचीत हो रहा है, और वो फिल्म में भी बनाया गया है, तो हम जब पास होते तो दिल करता कि क्यों ना हम एक बार एक खा लेते हैं, पर क्योंकि पानी का वहाँ हम सब के मुसीबत दे सकते हैं।
1: हाँ, कोई बात नहीं, अब की बार हम गंगा जल में पानी पूरी बना के आप लोगों को खिला
0: देंगे
1: भारत।
3: पानी पूरी कहते हैं और गोल गप्पे कहते हैं भारत में।
1: हाँ, इसी को बोलते
0: हैं, सेम सेम सेम चीज है,
3: पर अलग अलग जगह में लोग अलग से बात करते हैं।
0: और राजेंद्र
3: दिल्ली में कहते हैं पानी पूरी,
2: दिल्ली में कहते हैं गोलगप्पे, बॉम्बे में कहते हैं पानी पूरी।
3: अच्छा
0: ऐसा, तो राजेंद्र जी ऐसा है कि हमें भी अपना समय पे ध्यान देना है, और समय पे जब ध्यान देना है तो यहाँ शांता जी भी उंगली उठा दिया कि उसका माइक ऑन रखना, क्योंकि
3: हाँ क्योंकि अभी यहाँ पे बात हुई है लोहरी के बारे में,
1: लोहरी
3: लोहरी के बारे में,
1: लोहरी तो नहीं लोहरी
3: लोहरी
1: हाँ,
3: हाँ तो उसको उसके
1: हाँ लोडर लोहरी
0: लोहरी
3: हाँ मैं तो हाँ लोहरी लोहरी इज एन पॉपुलर विंटर फोल्क्स फेस्टिवल दैट फॉर नामलक इन नॉर्थ अमेरिका वर्ड गफीर्ड
0: कनाडा बगल
3: नॉर्थ इंडिया
0: इंडिया ओके
3: इंडिया
0: हाँ नॉर्थ इंडिया
3: त्योहार मनाते हो गए ना मार्केट तो यानी कि जैसे घाम भी थोड़ा सा अपना अलग से दिशा लेगा ना इस पे। हाँ तो ये है थोड़ा से हमने बताई है होलांस भाषा में, डच भाषा में लोहरी के बारे में।

0: तो राजेंद्र जी, समय के अनुसार और हम सबका
1: होता है न्यूज
0: और कमर्शियल्स के, और अभी हम सब फिर दोबारा आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eiste de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Rond deze tijd gaan de onderhandelaars verder met het overleg. Er geldt ook een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk komende nacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven om advies te geven voorafgaand aan Prinsjesdag. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoot tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. VAHON Hindoestani Radio.
3: अभी आप लोगों ने सबने न्यूज सुना, अब बढ़ते हैं आगे के कार्यक्रम की ओर। मकर संक्रांति, अभी लोहड़ी का जैसे कि बबली जी ने अभी पूरा निरूपित किया है, यानी समझाया है कि कैसे पंजाब में और लोहड़ी और इधर पोंगल और दूसरी जगह में अलग अलग प्रकार तीन इकट्ठे त्यौहार आते हैं एक ही बार में, और मकर संक्रांति अगले दिन, तो बड़े अच्छे से सब लोग समझे होंगे। बढ़ते हैं मकर संक्रांति की ओर, जो पौष यानी कि पौष का महीना ख़त्म होता और एक संक्रांति होती है, जिस दिन माघ का महीना लगता है उस दिन मकर संक्रांति।
4: राजेंद्र जी, जैसे आप कह रहे हैं कि कौन सा महीना ख़त्म होने वाले हैं हमारे हिंदू
3: के, पौष, पौष का महीना,
4: पौष महीना,
3: हाँ
4: ये ख़त्म होने वाला है, तो फिर मकर संक्रांति।
3: हाँ, मकर संक्रांति से धीरे धीरे बढ़ते हैं गर्मी की ओर,
4: यानी कि गर्मी धीरे धीरे दिन और लंबा होने लगा।
3: हाँ, दिन और लंबा होने लग गया है ऑलरेडी, लेकिन अभी 14 तारीख तक ठंड ज़्यादा रहती है, 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक काफ़ी ठंड रहती है, इसके बाद धीरे धीरे सुधार होता मौसम में और गर्मी की ओर बढ़ते हैं मकर संक्रांति के दिन से। 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांत होती है, सवेरे हलवा पूरी या खीर बनाते हैं और खिचड़ी रेवड़ी रुपए मूंग की दाल चावल मिलाकर मीन शक्कर ब्राह्मण को देते हैं, साथ में सामर्थ्य होने पर कोई भी 14 चीज़ें मिशन कर गरीबों को बांट देते हैं, यानी संक्रांत के 360 प्रकार के नेग होते हैं। जिस लड़की की इस दिन इस वर्ष शादी होती है उस वर्ष में, उस दिन में, वर्ष तो पूरा ही वर्ष होता है लेकिन उस दिन में मकर संक्रांति के दिन में, उस लड़की से जो भी नियम कराया जाता है दूसरे वर्ष, उस लड़की से उद्यापन करवा कर उसकी मायके से ससुराल में विशेष बयाना भी भेजा जाता है। बयाना आप समझिला
4: ना, थोड़ा से सरनामी में, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के सुनने वाले
3: बोले,
4: हमारे मामा जी तो, कार्यक्रम को सुन
3: मामा
4: रहे
3: जी हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं तो वो भी समझे इस बात को, और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो जब लोहड़ी के दिन और मकर संक्रांति के दिन लड़की के मायके वाले बहुत सारी चीजें उधर लड़की के ससुराल में देने के लिए जाते हैं,
4: कादू यानी कि,
3: हाँ कादू,
4: ऐसा
3: ऐसा। इस बायने में मावे अर्थात खोए के 360 बये अर्थात पेड़े या लड्डू और सास ससुर के कपड़े, चांदी का दिया, बत्ती व चिड़िया, बाजरा, चावल और सामर्थ्य होने पर पूरे परिवार के लिए कपड़े भी भेजे जाते हैं।
4: ऐसा, तो ये तो बड़ा बड़का त्यौहार है,
3: बड़का त्यौहार है मन,
4: बड़का सूटकेस लेके जाना पड़ता है।
3: बड़का संक्रांत पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य अनुसार प्रतिवर्ष लड़की के दामाद व बच्चों के गर्म ठंडे वस्त्र फल मिठाई गज्जक व रेबड़ी और दामाद के टीके का लिफाफा लड़की व बच्चों के रुपए भेजे जाते हैं। बहुएं ससुर जी को जगाने और कपड़े पहनाने का नेग गुड़ की भेली समझिला मतलब 2 किलो का एक गुड़ का इतना बड़ा टुकड़ा उसको भेली बोलते हैं गोल गोल बनता है तो वो गुड़ की भेली पहनावे के नेक गुड़ की भेली और रुपए देवे व ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े देते हैं। दे सास को सीढ़ी चढ़ाने उतारने का नेक तथा ननंद नंदेव जेठ जिठानी को वस्त्र देते हैं। बहुएं देवर को बादाम से मनाने आदि का कार्य भी संक्रांत के दिन करती है। आज के दिन से 1 वर्ष तक चिड़िया को 1 मुट्ठी बाजरा डालना जमदारनी को 1 टोकरा व झाड़ू देकर 1 वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना जमादार जो झाड़ू लगाते हैं और अगली संक्रांत तक साड़ी ब्लाउज और रुपए देना घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना अथवा 1 माह तक 1 थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को दान देना आदि नियम भी कुछ महिलाएं धारण करती हैं।
4: ऐसा
3: तो देख लो कितने इसमें नियम होते हैं।
4: हाँ बड़ा वही तो मैं सुन रहा हूँ राजेंद्र जी की काफी ये बड़ा बड़का त्योहार है
3: बहुत बड़ा
4: और ये त्योहार में ये त्योहार के लिए तो जरूर कुछ गीत भी होगा।
3: हाँ तो गीत है
4: तो हम सब एक गीत क्यों नहीं चला देते
3: क्योंकि जो नियम है भाई उससे पहले गीत को चला दिया जाए
4: चला देते हैं।

0: नारायण गरुड़ के वासी और सागर के वासी, जो अभी आपने बहुत ही सुंदर सा जो गीत सुना है बहुत ही मनमोहक था। और अब बढ़ते हैं हम आगे कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम में संक्रांत के नियम बताए गए हैं। जब गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा भेली दिखाओ अपनी। जब गुड़ की भेली बहू देती है अपने ससुर जी को, लीजिए पापा भेली दिखाओ अपनी, थैली यानी पैसों की थैली या हवेली घर बड़ा। तो मेवा मठरी जब देते समय, फल मेवा मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माजी मठरी खोलिए अपनी गठरी।
1: गठरी,
0: हाँ गठरी।
2: तो गठरी के मतलब,
0: गठरी मतलब जब एक कपड़े में बांध के बहुत सारी चीजें रखी जाती है, कौशली चीजें जैसे जेवर और सोना चांदी। तो वो कहती,
2: हाँ, तिलरी सोना का।
0: हाँ, तो वो कहती है कि मेवा लीजिए और अपने वो गठरी हमको दीजिए।
2: ये त्योहार में ये सब चीज भी होता है,
0: चलता है। तो और जो बड़का बात रहे, वो कहते कि पति को पान खिलाते समय पत्नी कहती है, लो सैया जी पान रखो सदा हमारा मान।
1: ये तो बहुत अच्छा बात है।
0: कौन खिलाता है? पत्नी जब खिलाती है
2: तो उससे कहते है कि
0: लो सैया जी पान रखो सदा हमारा मान।
2: ऐसा बात फिर, तो ये त्योहार में भी बड़ा मजेदार बातें होते हैं।
0: फिर छुआरा भी खिलाया जाता है पति को। तो छुआरा खिलाते समय कहती है पत्नी, लो सैया जी छुआरे सदा रहो हमारी।
1: तो ये छुआरे क्या होता है?
0: छुआरे जैसे काजू होता है वैसे बादाम होते हैं, छुआरा भी होता है ड्राई फ्रूट में।
2: ड्राई फ्रूट,
1: अच्छा।
0: हाँ, छुआरा नहीं जाने ला आप?
2: नहीं,
0: छुआरा बबली जी आप समझिए, छुआरा होता है।
3: हाँ जी, जो खजूर होती है
0: वो जब सूख जाता है,
3: सूख जाती है, उसको छुआरा कहते हैं।
0: हाँ,
3: आप कहते हो
2: दादर।
3: हाँ जी,
2: कैसे?
0: हाँ, और जो बड़ा है और बड़ी बात यह है कि देवर को बादाम जब दिया जाता है तो छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम बनियो रही हमारी सदा गुलाम।
2: ऐसा
0: की। और जब नंद को मनाना होता है तो छोटी ननद के कपड़े बनवा कर बतासे देकर भाभी कहती है, लो नंदिया बतासे दिखाओ अपने तमाशे।
2: वो तो ननद को सुना देते।
0: हाँ, ननद तो तमाशा दिखाते है ना मम्मी के सामने अपने।
2: ऐसा,
0: तो फिर वो उसको डांट पड़ती है बहू को। तो उस समय वो बदला लेने की सोचते।
2: राजेंद्र जी, कार्यक्रम तो हमारा लगातार इस समय चल रहा है सिर्फ संक्रांति, मकर संक्रांति के अंतर्गत कार्यक्रम जो बनाया जाता है ना, तो हमारे जो विशेषज्ञ है जो हम सब के लिए तेईमा रख देते हैं, और तेईमा के बाद में हो जाता है, उसके बाद में तेईमा जो हम लोग को मिल जाता है, तो उसमें हो जाता है गानों का और तैयारी करना। राजेंद्र जी, तो गाने का तैयारी हम सब के लिए, शांता खेमा जी जो हम सब के लिए तैयारी करते हैं, हम लोग उन बहुत 5-6 गाने चला पाते हैं।
0: हाँ।
2: पूरा कार्यक्रम में, पर इन्होंने कुछ 18-20 गाना हर बार खोज करके हम सब के लिए चुन के लिए रख देते हैं। पर कुछ गाने बनाए गए हैं जिसे हमें ध्यान देना, क्योंकि ऐसा है कि जैसे कि हम लोग के कार्यक्रम के लिए इतना सुंदर गीतों को चुन के रखते हैं, जिसे हम जान गए हैं कि शांता जी जो पिटारा से भर के लाए हैं। तो शांता जी, इसके अंतर्गत में आप कुछ हम सबको सुनाइए।
1: ये पिटारे में गाना गीत भर कर लाती हूँ
2: जी, आप अपने शांता का पिटारा।
1: ना, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कैसे कहते हैं, हिम्मत मिलता है और भी खुशी मिलती है, क्योंकि हमारे सुनने वालों की इसमें भी प्रेरणा है, प्यार है। तो उसी की तरह मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये सब करने के लिए। और जब मैं तैयारी करती हूँ तो बैठकर स्थिर से एक एक गाना इसे खोज कर तैयारी करके लेस बनाती हो, फिर नहलाती हो तो उस पर देखती हूँ। पर वो आसान नहीं है, क्योंकि एक एक गाना को सुनना पड़ता है।
2: सही बात, क्योंकि वो जानना चाहिए, क्योंकि हर एक गीत पे कौन संदेश है उसके पीछे, दत्त कुनवाइनी सोमर लाइफ अचंद,
1: वाकई में उसमें बहुत सारा काम।
2: ये एक रेडियो स्टेशन है जो कि 188 देशों से सुना जा सकता है, और कितने देशों में भी सुना जाता है, और जो लाइव ब्रॉडकास्ट में हम सबको उस पर ध्यान देना पड़ता है। कभी गलती हो ही सकते हैं, गलती तो हम बच्चे रूप में हो ही जाता छोटा रूप में, पर सब गानों को ध्यान देना पड़ता है।
1: वो है, इसलिए चुन कर लाती हूँ, अरे खोजबीन कर हमारा प्रोग्राम को बनाने के लिए, ऐसे ही हम आप लोग भी जो संयोग देखते हैं और इसमें आप लोग के भी प्रेम है प्यार है और हमारे सुनने वालों के भी जो प्रेम है प्यार है, तो मुझे अच्छा लगता है भी ये सब करने के लिए।
2: दोस्तों सुनने वालों, शांता जी जो अपना संदेश हम सबको सुनाए कि कितना काम करना पड़ता है और वो हम सब के लिए तैयारी करके यहाँ आ जाते हैं।
1: पर संजय जी आप भी बहुत इतने सारे तेमा भी खोजते हो और राजेंद्र जी भी अपना वक्त भी निकाल कर आते हैं, टाइम पर पहुंच जाते हैं आप दोनों भी।
2: हमें तो ये है कि बस स्कूटी पे बैठो और यहाँ पहुँचो। राजेंद्र जी
0: बहुत बढ़िया, आपका जो स्कूटी पे बैठो यहाँ पहुँचो वाला सिस्टम है वही सबके ऊपर भी लागू होता है। हम भी अपने जब जॉब से चलते हैं तो सीधा यहीं पहुँच जाते हैं और जैसे कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम रहता है तो कह देते हैं। तो ज़्यादा इसमें शांता जी का ज़्यादा मेहनत हमें लगता है,
2: ज़्यादा मेहनत है। और दूसरा है कि जो हमारे भाई संजय शर्मा जी जो पहाड़गंज से और रिंकू कालिया जी जो मोहन गार्डन से जो बजरंगी सेना का सभापति है और श्रीमती रत्ना जी जो अपने ओर से हम सब के लिए जो विषय रखते हैं हम सब के लिए खोज देते हैं तो वो हमारे लिए भी आसान हो जाता है। बबली जी आप भी कई बार कार्यक्रम में सहयोग दिए हैं तो आपको ये कार्यक्रम, क्योंकि कभी कभी आप यहाँ नहीं होते और आप ये कार्यक्रम को घर से सुनते हैं?
3: हाँ जी, मैं तो हर बार सुनती हूँ घर से।
2: और आपको क्या लगता है ये कार्यक्रम में, क्योंकि
0: लेकिन लोगों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आता है।
2: मेरे ये बात पे मैं आपका बहुत भी और ये भी सोच रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं क्योंकि कुछ चल रहा है तो उसे चलने दो, पर उसमें ज़रूर कुछ और रखना चाहिए क्योंकि इस पे भी हम सब कुछ बात किए गत दिनों में। ICC में थे भाई राजेंद्र जी के साथ और बातचीत हो रहा था तो इसमें सोचा जा रहा है कि कुछ चीज़ हम सबको और इसमें बदलाव लाना है।
3: हाँ जी, अगर आप बदलाव लाओगे तो लोगों को सुनने में और अच्छा लगेगा।
2: और लोगों को सुनने में, पर हमें ये सोच रहे थे कि लोगों को अब इसमें शामिल करने को।
3: हाँ जी, वो तो और अच्छी बात है। बल्कि
2: इसमें बस ये बात हुआ है हमारे बस्तूर जो इस ज्योति का प्रकाश से हम सबके ये हुआ है कि हम क्यों ना इसमें ये डालें कि हम कौन हैं। संस्कृत में उसे कहते को हम ना राजेंद्र जी?
0: को हम।
2: तो उस पे भी थोड़ा से हम लोग इस साल इस पे भी थोड़ा से बातचीत करेंगे कि हम कौन हैं। बबली जी आप भी कुछ कहने वाले
3: कि आपके कहने का मतलब ये कि ऐसा प्रोग्राम रखेंगे कि जिसमें हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं।
2: जी हमारा, क्योंकि हम तो है, हम आज 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 80 साल के हो गए हैं, पर हम वैसे ही थोड़ा आ गया है। हमारा एक पिता हुए है, एक माता हुए है और हमसे पहले हमारे पिता के एक पिता हुए है, एक माता हुए है, उससे पहले उसके एक पिता हुए, एक माता हुए, क्योंकि ऐसे हम सब ये गोरे लोग हम सब के देश में जो 18 पीढ़ी तलक जाते हैं, कोई 22 पीढ़ी तलक यहाँ तलक की उन्होंने खोज डाले।
3: हाँ जी, कि हमारे दादे परदादे कहाँ से आए।
2: हाँ, हम किसके किसके बीच है।
3: हाँ जी,
2: हमारा शुरुआत तो एकदम यहाँ से कि हमारे मामा जी ने यहाँ हम सब के लिए रखे हैं कि स्तंभम फॉर्म ब्रह्मा, तो वहाँ से पर उतना दूर तो हम लोग हम कम से कम एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तलक जब हम ख्याल कर ले तो हम सब के लिए वही काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि ये बात हो जाता राजेंद्र जी, हमारा ये छोटा से टूटिया हो गया है ये हम सब कहीं विवाह संस्कार में जाते हैं ना, तो विवाह संस्कार में जब कन्या दान को किया जाता ना,
0: हाँ,
2: या साकोचार मंत्र पढ़ा जाता है तो वहाँ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का नाम और तीसरे पीढ़ी का नाम लिया जाता है। तो वहाँ जब देखो माढ़ों में जब पूछो पिता से कि पिता का नाम, पर पिता का नाम, वृत्त पिता का नाम, तो पहला वाला पूछने पे ये बात मालूम हो जाता है कि दूसरा पूछने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जब अपने भाई बंधु कर देख करके और ये पूछने लगते हैं बप्पा के नमवा कैसे रहा, तो वहाँ पंडित समझ जाता कि कई बजल। ऐसा है कि हम सब अभी कम से कम इस बात पे ध्यान दें कि हमारे जो जिनके जरिए हम आज है, हमारे ये मनुष्य शरीर को हम प्राप्त हुए और हमें कैसे उस पे ध्यान देना है, हमें कैसे हम उन पे हम उन्हें ना भूले, क्योंकि सब हम नहीं जान पाएंगे कभी नहीं। पर कम से कम तो हम लोग जो सूरीनाम से होलांत में आए तो हमारा तो बस 1873 आतीन्द्रिय से तक ना, तो हमारे तो बस ज्यादा दिन नहीं हुआ है, बस पांचवा छठवा पीढ़ी चल रहा
0: है। तो कोई बड़का
2: तो बड़का नहीं है और खोजने के लिए भी रास्ता है। तो राजेंद्र जी क्यों ना हम एक गीत पहले चला देते तो मकर संक्रांति के बारे में और भी बात करना है।
0: हाँ जरूर, एक गीत चाहे हमें चलाना, इसके बाद बात करते हैं मकर संक्रांति की।

0: देने के लिए, दान लेने के लिए, ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो राजेंद्र जी, यहाँ ये बात हो जाता है कि अभी मकर संक्रांति के अंतर्गत में हम सब के कुछ संदेश अभी बाकी रहा, तो हम सब जरूर वो संदेश का और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम सबको ये मकर संक्रांति के बारे में कुछ और संदेश सुनाइए।
1: मकर संक्रांति के जो संदेश हैं वो इस प्रकार से हैं कि घाट पाट सींचने का जो नियम है बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोजाना सींचने हो तो रोज सींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आई उस दिन 31 जगह पूरे एक माह का सींच कर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर गोबर पर रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर एक साड़ी या ओढ़ना तथा एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके हाथ फेर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके देते हैं। और जो चिड़िया मुट्ठी देने का नियम बड़ी संक्रांति से ही लिया जाता है। 12 माह तक एक एक मुट्ठी चावल चिड़िया को देते हैं। यदि रोज़ देना संभव न हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़िया को देते हैं। 12 माह पूरे होने पर बड़ी संक्रांति के दिन उद्यापन करके 1 चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपए इन पर हाथ फेर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। यानी सास का इसमें ज़्यादा रोल है मन। इसके बाद भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवा कर एक थाली में मिठाई व रुपए रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम करके भगवान को समर्पित कर दी जाती है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के पीहर वाले लड़की की ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर, गद्दा, तकिया, रजाई, चादर भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपये तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ अपनी सास के भी चरण स्पर्श करके उनको भी रुपए देते हैं। इसके बाद ससुर जी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती है तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपए तथा लड्डू लेकर आएं तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपए दे दें। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपए दिए जाते हैं। सासू जी को कपड़े पहनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े, साड़ी, ब्लाउज इत्यादि पहनाकर अपने सासू जी के चरण स्पर्श करके रुपए देती है। और जो मेन विषय है, रूठी हुई सास को मनाया जाता है इस दिन। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती है।
0: ये भी त्योहार में गिनती है?
1: हाँ, ये त्योहार में,
0: संक्रांति में।
1: हाँ, संक्रांति में रहा। इस पर बहू रूठी हुई सासू को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपए देती है तथा चरण स्पर्श करती है और सासू जी से निवेदन करती है कि वही अपने कमरे में चले। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर अपनी बहू को आशीष देती है।
0: शांता जी, इस पे आपको क्या कहना है?
1: शांता जी की तो सासू होगी, वो अपने बताएंगे।
2: सासू जी मेरी बहुत अच्छी थी, दिल की अच्छी थी, अपने बच्चों के लिए बहुत प्रेम प्यार
1: नहीं है क्या सासू जी?
2: क्या बोलो,
1: अब कहाँ गई सासू जी?
2: सासू जी वो
1: चल बसी।
2: हाँ।
1: तो उसको वही आशीर्वाद भेज दो।
2: हाँ हाँ, उस मेरे को आशीर्वाद दो को देख के घर मैं उसको भी प्यार करती हूँ।
1: जलेबी और पान का नेक। एक नारियल में गिन्नी अथवा रुपए भरकर अपने पति को देती हैं। उस नारियल के ऊपर 4 जलेबियाँ, पान तथा रुपए भी रखकर देती हैं। पति के चरण भी स्पर्श करती हैं। पति को मलाई खिलाई जाती है उस दिन। एक चांदी की कटोरी में मलाई अथवा रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाई जाती है।
2: राजेंद्र जी, ये मलाई क्या होता है?
1: मलाई जब दूध को गर्म करते हैं और ऊपर एक परत लग जाती है उसको मलाई कहते हैं।
2: इसलिए हमने ये एक जात है ना, मलाई।
1: नहीं,
2: इंडोनेशी के जो है।
1: हाँ, तो इसके बाद उन्हें दुशाला अथवा 5 वस्त्र, कोट, कमीज, पैंट, रुमाल, बनियान इत्यादि देकर उन्हें चरण स्पर्श करती है। पति के पैर धोए जाते हैं उस दिन। एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोती है। पैर धोने के पश्चात उन्हें मोजे तथा जूते पहनाए जाते हैं। फिर उनके चरण स्पर्श कर रुपये भी दिए जाते हैं और फिर सासू की कमर को मसल मल दिया जाता है। सासू की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज तथा साड़ी देते हैं। उनके आगे मेवा मिठाई तथा रुपये रखकर उनके चरण स्पर्श करती हैं। दूध पिलाया जाता है। अपने ससुर अथवा जेठ जी को चांदी के गिलास में दूध पिलाते हैं तथा उनके सामने एक थाली में मेवा मिठाई व रुपये भी रखते हैं। दूध पिलाने के बाद वह गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है। ससुर व जेठ जी बहू को नेक के रुपये देते हैं। इस प्रकार से गेहूँ साड़ी रुपया इत्यादि पर हाथ फेरकर ब्राह्मण को दिए जाते हैं। एक साल तक 360 प्रकार की खाने और पीने की चीज़ें मंदिर में या भांजी नंद आदि को 1.125 शेर के हिसाब से देते हैं। ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की सीसी कंगी सीसा सिंदूर तथा मांग का टीका भी दे सकते हैं। ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उसे अंगूठी दे सकते हैं। ब्राह्मणी के पैर धोकर उसे पाजेब व बिछुए चुटकी पहना सकते हैं। ब्राह्मणी को नहलाकर उसे लोटा बाल्टी तथा साड़ी ब्लाउज रुमाल तौलिया देते हैं। फिर पैर छूकर दक्षिणा भी देते हैं। 14 जगहों में पुरुष महिलाओं तथा बच्चों के भी कपड़े रखकर तथा सुहाग की वस्तुएं आभूषण गीता की पुस्तक तुलसी की माला व दक्षिणा रखकर इन्हें 14 ब्राह्मणों को देकर प्रणाम करना चाहिए। तो हमें चाहे मान 14 ब्राह्मण ढूंढे कल। हाँ, ये तो विषय है कि किसी ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन कराकर अंतिम संक्रांति के दिन साड़ी ब्लाउज व दक्षिणा देकर प्रणाम करती है और आदर के साथ विदा कर देती है। ये सबसे अच्छा लगा।
0: तो ये सबसे अच्छा लगा।
1: हाँ।
0: तो राजेंद्र जी ये बात है। शांता जी इस पे आपके कुछ है कहने को?
2: मैं राजेंद्र के साथ सहमत हूँ क्योंकि हम जो प्रोग्राम यहाँ दिल से लगा कर बनाते हैं सजा कर सब पेश करते हैं तो सभी अच्छा लगता है।
0: पर शांता जी मुझे तो सभी जरूर अच्छा लगता है पर कोई कोई कार्यक्रम भी काफी मुश्किल कार्यक्रम भी थे।
2: हाँ, पर
0: उसमें से एक पे हम जब ध्यान दिया जाए कि साल का शुरुआत में हम सब एक तेमा किए थे अगस्त ऋषि का।
2: हाँ जी,
0: अगस्त ऋषि। तो उसके बाद में जब ये कार्यक्रम को हमने सुने तो हमने और उस पे जब ध्यान देने लगे ना।
2: हाँ?
0: तो पता चला कि जो आज हमारे बतराई अवतो हो गया ना, आक्यू वाला अवतो हो गया।
2: हाँ?
0: और खास करके अभी गत दिनों मेरा एक कोलेखा जो पहले हमारे साथ काम करते थे।
2: हाँ?
0: पिलोत।
2: अच्छा।
0: जो प्लेन उड़ाने लगे जो क्योंकि कब से ये खोज कर रहे थे यानी कि हवाई जहाज जो हम कहते हैं कि पसाशीर्स फ्लिक्टाइक और कैसे बोलते हैं जो एन परसों फ्लिक्टाइक रहे तो ए परसों वाला छोटे छोटे प्लेन आदि वो सब अब बैटरी से जैसे कि गाड़ी चलने लगा है बैटरी से। तो जब हम लोग कार्यक्रम जो किए थे शुरुआत में ये पिछले साल के बात है तो उस समय पे एक गाड़ी जो लगभग 400 किलोमीटर चल सकता था
2: इलेक्ट्रिस
0: ताकि एक साल में कितना तरक्की किए हैं एक चीज से। तो ऐसे कितना चीज है जो जिसे जिसके हमें ज्ञान था ही नहीं और हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और जब हमें इससे कार्यक्रम से कुछ ना कुछ ये ज्ञान को प्राप्त होता है जरूर हम उस पर सोचते हैं तो देखते हैं कि हाँ कहीं तक तरक्की भी होता है और कहीं भी यहाँ कुछ है जो हम सब के भी हानि होते हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते थे।
2: हाँ, चढ़ाव उतराव तो
0: ये जीवन है
2: लगते हैं। हाँ।
0: राजेंद्र जी मकर संक्रांति के बारे में और क्या सुनाने वाले आज?
1: मकर संक्रांति के बारे में तो हमने पूरा सुना ही दिया, क्यों ना थोड़ा सा एकादशी की बात की जाए जो कि सफला एकादशी का व्रत किया है। तो सफला एकादशी का व्रत जो होता है वो क्यों होता है और किस लिए किया जाता है? हाँ
2: नहीं, क्योंकि आपने कहा कि आप चलेंगे एकादशी के बारे में तो हाँ। मैं सोच रही हूँ कि मकर संक्रांति के बारे में मैं नीदरलैंड्स में कुछ बता दूँ।
1: हाँ जरूर।
2: हाँ, द मकर संक्रांति इज अ हिंदू फेस दैट वर्ड फीर्थ इन बैन आल देल फॉर इंडिया एंड नेपाल मार एक से अखफान ऑफ ओवरऑल वो नदर मैंस दी देस ऑफ दिट फेस फीर्थ है। सभी जगह पर भारतीय लोग है तो सभी जगह वो सब मना रहे Het feestveld op 14 januari er wordt gevierd dat de zon in de sterrenbeeld steenbok komt. Het is een van de weinige hindoefeesten die gerelateerd is aan de zon en daarom jaarlijks op een vaste dag van het westerse kalender valt. Het feest wordt vooral op straat gevierd. Een van de uitingen is het oplaten van kleurrijke vliegers.
0: Patang.
2: Patang, ha.
0: Rajinder ji, patang bhi udana hai.
1: Patang udaya jata hai.
2: Vliegers, ha.
1: पतंग उड़ाने का मतलब यही होता है कि हमने किसी को डोरी से बांध रखा है और उसको जब उड़ जाता है आसमान पे तो छोड़ दिया जाता है कि तुम आजाद हो
0: ऐसा
1: हाँ तो यही भाव पतंग का है
0: पतंग का ये भाव
1: पतंग है लाइफ यारो
0: अच्छा
2: एक एक खास चीज भी है कि हिंदूस खलोफन दैट से दी ऑप 14 जनवरी स्टेफन हुन रीइनकार्नेशन साइक्लस डोरब्रेकन एंड एन वर्डन मेट खुद
0: ऐसा तो बड़ा अच्छा संदेश सांता जी ने हम सबको नई दलांस में भी सुना दिए राजेंद्र जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर चलते हैं
1: हाँ जरूर
0: तो फिर आगे का कार्यक्रम देखा जाएगा
1: हाँ

0: जगत पिता सूर्य देव की जय, मकर संक्रांति पर्व की जय। तो आज की जो अभी बातचीत चल रही थी, बहुत ही सब लोगों ने अपने अपने बढ़िया अच्छे से समझा होगा, और शांता जी ने नीदरलैंड्स में भी इस चीज़ को समझाया।
1: हाँ, ये बात है कि हम सब मकर संक्रांति के अंतर्गत में जो संदेश रखा गया, जो हम सब अपने त्योहारों के अंतर्गत में, ये त्योहार के अंतर्गत में ये संदेश रखा गया, और कुछ संदेश राजेंद्र जी, क्योंकि हमारा घड़ी जो चल रहा है रफ्तार।
0: हाँ, अभी जो सफला एकादशी व्रत है उसके बारे में थोड़ा। सफला एकादशी व्रत भी व्रत पौष कृष्ण एवं एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करे तथा भोग लगाए। ब्राह्मण को तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने में समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है, और यही हमारी भी कामना उनके साथ है। सफला एकादशी व्रत की कथा पहले सुन लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा समझ लेंगे। तो जल्दी एक बार, एक दिन पूष माघ की कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने चंपावत नगरी में महिष्मान नाम के राजा राज्य करते थे। उनका बड़े बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। वह मांस मदिरा पर स्त्री गमन वैश्यों के संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसने अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वहीं थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्बक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी हो रही। पिता के राज्य में चोरी करने से चले जाता तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ, पेट को गम लगा। जीवों को मारने में भी आज वह असमर्थ था। वृक्ष पे चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप भी क्या भोग लगाएंगे। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन में मौत भली, यह कहकर वह प्रभु का ध्यान में मग्न हो गया। उसे रात भर नींद न आई। वह भजन कीर्तन करते रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों को भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगा, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जान के या अनजाने में हाथ लगाने से जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस

0: घोड़ी पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्बक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी बैठाकर स्वयं तप करने के लिए वन में चले गए। लुम्बक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। तो चाहे सब लोगों को सफला एकादशी जरूर करना।
1: इसमें विवान आपको क्या कहना, क्योंकि आप भी कुछ इसके बारे में लेकर आए हैं।
2: एकादशी इज अ संस्कृत वर्ड फॉर सर्वर एल्फ। पर मंथ कम द एकादशी डॉग ट्वे केर फॉर इन अ वेरिसे मंथ कैलेंडर। De eerste Ekadessie valt op de ene helft van de maand, op de elfde dag na de nieuwe maan. De tweede Ekadessie valt op de andere helft van de maand, op de elfde dag na volle maan.
1: Toen Rajender ji, Vivaan bhi, dankjewel Vivaan dat je dit ook even hebt mee verteld. Aur dosto, jaise ki hum sab yahan par karyakram karte hain, karyakram mein kabhi ye ho jata hai ki log phone karte hain hum sabhi ko aur phone nahi utha sakte hain karyakram karte samay, aur kuch phone jarur uthaya jata hai, to log bhi is pe sochte hain ki kya aur kaise ye jo hamare teemwa hote hain usme kabhi kal ke हम सब कुछ वृतांत अंतर्गत कुछ संदेश सुनाते हैं, पर लोग को ऐसा भी हो जाता है कि ये कथा है, वृतांत है, या खसकिदने से या फरहाल है। तो इसमें हम सबको इसका अंतर भी जानना है, क्योंकि यहाँ हम सब पंडित कोई नहीं है। हम सब के जो वृतांत यानी कि मिलते हैं वही हम सब आपके लिए रखते हैं। जरूर ये कहना चाहूँगा कि राजेंद्र जी, आप जैसे कि और एकादशी अंतर्गत में सुना ही चुके हैं, और बबली जी आपके इसमें क्या सुनाना, क्योंकि ये आप इतने कार्यक्रमों को सुने हैं तो उसमें से जरूर कुछ ना कुछ तो आप अभी तक जानते होंगे कि क्या और उसमें क्या लाभदायक हुआ ये कार्यक्रम सुनके।
3: एक छोटी सी कहानी याद आ गई। हिरन की रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर और शेर की रफ्तार 98 होती है। इसके बावजूद अक्षय हिरन का शिकार हो जाता है, क्योंकि हिरन को लगता है कि वह शेर से कमज़ोर है। यही खौफ उसे बार बार पीछे मुड़ कर देखने को मजबूर करता है और हिरन का हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए आप खुद पर यकीन रखिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। आप अपने सपने और लक्ष्य पर अड़िग रहिए। कोई आपका साथ दे ना दे, खुद पर यकीन रखिए।
1: राजेंद्र जी, यो गीत का इंतज़ार है जो हमें सुनने वाले, क्योंकि समय जो रफ्तार अपना चल रहा है, तो उस पे आप वो गीत चला दीजिए। हाँ, फिर हम सब आगे।
0: समय का पता नहीं चलता कि 2 घंटा कब हो गया है, और 2 घंटा तो पता ही नहीं चलता। वैसे ही 2 घंटा के बाद जब हम ये गीत चलाते हैं तो लगता है कि हमारा समय एकदम विराम की ओर आ जाता है। लागी छूटे ना अब तो सनम, गाने को सुनते ही सब लोगों को समझ में भी आ जाता है कि अब हमारा पूर्णता की ओर बढ़ता है।

हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल यह है सुख को ताला किसने लगाया है। मेरी ओर से सब सुनने वालों को नमस्कार।

सनम। रिश्ता निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, बस दिलों में प्यार चाहिए। उसको निभाने के लिए आप सभी को हम यहाँ से भी बहुत से धन्यवाद कहती हूँ कि आप जो हम में यानी कि ज्योति का प्रकाश सुनने के इसमें जो सहयोग दी, अपना विश्वास भी दी और हमको भी यहाँ से बहुत आनंद मिली आपकी सेवा करने के लिए। ऐसे भी उम्मीद है कि आप सदा ही ऐसे ही अपना साथ देते रहना और स्वीकार कीजिए शांता की भी।

दूर हूँ फिर भी दिल के करीब हूँ। रेडियो के माध्यम से कोई दूरी तो हो नहीं सकती, हर किसी की दूरी नज़दीक ही हो जाती है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि अपनी बात आप जहाँ भी हो, बगैर किसी नेटवर्क हर जगह रहता है रेडियो का फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो किसी के नेटवर्क की वो, और उसमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, केवल एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, वो भी आजकल मोबाइल में और हर जगह अवेलेबल है। तो इस प्रकार से लोग रेडियो को सुनते हैं, वो सब के लिए जो श्रोता हैं उनको बहुत बहुत हम आभारी हैं कि हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और पसंद करते हैं। फिर मिलते हैं अगली बार, फिर इसी दिन इसी बार अगला कुछ कार्यक्रम लेके। तब तक के लिए सबको नमस्कार।

0: शरीर।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। दोस्तों, यहाँ तक था कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। और यप आज का कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शांता खेमाई, बबली आसरा, विवान भगवंत, राजेंद्र सिंह और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही है कि कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए जरूर पहुँचा होगा। और सभी को एक शुभ रात्रि कहते हुए नमस्कार, फिर मिलेंगे।

हर एक काम जो रही किसे लेकर आना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टैक्ट कीजिए फाह और हिंदुस्तानी रेडियो के डॉक्टर से न्यू सी फोन तक 3 से 5 2 8 2 फी सी पर आपको तार करना है।

की महफिल सजाने लगी, दिल के महफिल सजाने लगे के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

nieuw song met Pitch Karunga Dosto 2025 में ये गीत बना है और मेरे सनम आया है गाना बोल है मेरे सनम आया है हम सब मिलकर सुनेंगे

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप सुनेंगे।

यार है नया एहसास है। आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाजों में। मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, खुशी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

कर हूं मैं, क्या बात है, हार्ड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

मात्रा में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ, चटनी सॉन्ग तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। Let's dance!

सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए क्या बात है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग सर तो तैयारियां कर दिया है तो उतार के बिग दिया है दोस्तों डांस कर रहा लेट्स डांस

ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज, ताम ताम भोजपुरी सॉन्ग चलेगा। एक हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ साहब यूसुफ भी बैठा हुआ है।

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रवि सिंह एंड नाडिया सिंह, दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

आपकी बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग सॉन्ग फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा निहिर सिविल शास्त्र के बात है जब ये सुनाम देश आया और उसी समय पर एक बार बना था जिससे एक पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पता पता।

0: मेरी मकेबा के बाद हिंदी बबलिंग मैशअप धीरज सक्सेना एंड नाथान शो टाइम शो टाइम शो टाइम दोस्तों
1: 6 million ways to die choose one.

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए, हम यार है तुम्हारा अगर यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ दोस्तों, हम यार है तुम्हारे।

यार है तुम्हारे। यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहड़ी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में। तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था। लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जोगीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोली ला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गया रहा। तो इसी कारण मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

आ रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। बप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज में आप सॉन्ग सुनेंगे।

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं 67 तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने ताक तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज़ में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं। ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जो देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, Pika, happy station Fahorn Hindustani Radio, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, मैं सोचता हूँ दुनिया में हर एक इंसान को धोखा जो एक बार होगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान धोखा दुनिया में जरूर एक बार खाया होगा। तो एस डी बर्मन का सॉन्ग है, रजेश खन्ना मुमताज फिल्म में काम किया और आप जानते हैं सुपरस्टार रजेश खन्ना, उन दोनों में एक रजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़क्का से यहाँ पर फिल्म पेश करते थे। अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था, सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं, एक दूसरे अलहदा तरह के फिल्म है। फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्टिंग से भी थी उन दिनों में। रजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था।

0: आँखों में यारों का दिल खो जाता है।
1: दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायक की है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाज़ों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, यह पागल रखा पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर के आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों, फिल्म दीदारी यार, फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया, और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया, फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फीट दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को। तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी जो ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया, जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा जाओ किशोरदा से बातचीत करो कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के। तो किशोर कुमार ने कहा मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्र से कहा, जितेंद्र 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया, और फिर 20,000 दिया जाओ इन्हें राफी साहब के दो दे। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया, तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे, और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी, उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ 2 बार हुआ, लेकिन किशोर तुई माल दे तो चाहता है एंगल तुई माल फिर दर्शन आँख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता, दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे।

शब्द जो है ये रेगी हिंदी म्यूजिक आपके लिए जो पेश हो रहा है मेरे प्यारे सुनने वालों, और आपसे ये बता दे इस रेडियो स्टेशन जो ऐसा ही न्यू स्टाइल गीत आपके लिए ला रहे हैं। इस द एस्ट एंड बेस्ट रेडियो स्टेशन सिर्फ आपके लिए, आपके लिए नए से नए गीत आपके लिए चुनकर खोजकर और ला रहे हैं सुनाने के लिए। और ये रेगी स्टाइल में आप ये शब्द जो है उसे सुने और एक एक शब्द हमारे जीवन के कुछ लाइन इसमें जरूर आप पकड़ पाएंगे। हाँ, सोचेंगे हाँ ये तो बात सही है। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ से चलते सुनने के लिए फिर ये रेगी स्टाइल में और शब्दों में क्या हमको सुना रहे हैं।

अवश्य अवश्य, सुकून बाजार में नहीं मिलती मेरे दोस्त नाना। और कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत मेंसलक है, इस द ग्रोटेस्ट रैक्टम। इंसानियत के बिना ये दुनिया जीने लायक नहीं रह जाएगी। आपने ठीक सुना कि इंसानियत के बिना ये दुनिया जीने के लायक नहीं रह जाएगी। इंसानियत ही इंसान की असली पहचान है ना।

हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, की दुनिया में रहना है तो अवश्य काम करो मेरे दोस्तों। काम के बिना यहाँ रोटी भी नहीं मिलती है। फिल्म हाथी मेरा साथी किशोर दास जी की आवाज में श्रवण की है हम।

प्यार है और कहते हैं कि इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, हकीकत में उसे लिबास में नहीं बल्कि इंसान में तलाश करो।

जीवन खुशहाल में बिताएगा, है ना। हाँ, ये कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाकर तीरथ किए हजार। ठीक सुना आपने कि गंगा में डुबकी लगाकर तीरथ किए हजार। इससे क्या होगा मेरे दोस्त अगर बदले नहीं विचार। हाँ, कि गंगा में डुबकी लगाकर तीरथ किए हजार, इससे क्या होगा मेरे दोस्त अगर बदले ना।

0: अरे अरे ए ए ए ए
1: एक से एक लाजवाब गीत आपके लिए यहाँ से पेश हो रहा है।

फिल्म आदमी और इंसान से ये सुंदर सा गीत हम सुने ओ नीले पर्वतों के धारा, और इस बार हम सुनेंगे फिल्म नागपंचमी से मैं नदिया की धारा।

ढोल का फूल से ये सुंदर सा गीत, मैं तो भूल गई थी ये गीत को, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा। और इस बार हम सुनेंगे जिंदगी एक सर।

कलम हरियाली और रास्ता से मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में सुने हम निकंतीन त्वीन सेस्त की पिक्चराइज किया फिल्म है। इस बार सुनेंगे फिल्म ब्रह्मचारी से।

चक्का फिल्म ब्रह्मचारी से सुनाई दी हमको मोहम्मद रफी जी, साज और संगीत शंकर जयकिशन। इस बार हम सुनेंगे नीले गगन के तले, फिल्म हमारा से महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

गगन के तले नीले गगन के तले सुने हम और उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए थोड़ी सी बेवफाई से ये सुंदर सा गीत।

में मौसम मौसम लवली मौसम, थोड़ी सी बेवफाई से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है इस बार बरसात की एक रात से लता जी की आवाज में।

Čábus lidí. और इस गीत पे एक की है रजेश खन्ना और हेलन जी। फिल्म का नाम द ट्रेन 1977 में पिक्चराइज किया गया है। गीत का बोल आप जरूर सुनते रहना।

महबूबा महबूबा, फिल्म शोले से हमने यहाँ से श्रवण की है। कुछ चेहरे भुलाए नहीं जाते मेरे दोस्त, कि कुछ चेहरे भुलाए नहीं जाते, कुछ नाम दे

ना मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लाइन है, आप जरूर सुने, इसे पसंद करेंगे। कि कभी तो की होगी सूरज ने, कभी तो की होगी सूरज ने चांद से मोहब्बत। सुनिए जी, कभी तो की होगी सूरज ने चांद से मोहब्बत, तभी तो चांद में दाग है।

सूरज में आग है। ये लाइन भी आप सुने, इसे आप भी खुश हो जाएंगे कि दिल में रह कर, कि दिल में रह कर दिल पर वार करते हो, दिल में रह कर दिल को पर वार करते हो, जानते हो कि उसमें तुम्हारा ही बसेरा है, कि दिल में तुम्हारा ही बसेरा है, फिर क्यों अपने घर को वीरान करते हो, क्यों

Who are Shaitan? फिल्म साधु और शैतान से सुने हमने ये सुंदर सा गीत महमूद के एक्ट की हुई है। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, सुनिए तो जी कि आंसू आ जाते हैं।

कर सुझा लेना। बाद में मौका मिले या ना मिले, बस दिल पे ना लगा लेना, दिल पे ना लगा लेना। यहाँ से आपके लिए चुन कर रखी हूँ और आपको लेकर चलते हैं आशा भोसले जी की आवाज़ में, रातों का राजा फिल्म से निकालेंगे।

0: सुनो हेलो, मैं आपका सेवक संजय।
1: हे सुनो सुनो मिस चटर्जी, मेरे दिल
0: और सुनो सुनो मिस चटर्जी, आज 31 अगस्त है 2026, समय 7 मिनट बाकी है 6 बजने में। और सुनो सुनो मिस चटर्जी,
1: दिल का मैटर जी कलकत्ते वाली रूठ गई, क्यों बात नहीं।
0: कलकत्ते वाले के छोड़कर आज हमारे कुलेखा साथी शांता खेमाई जी का हैप्पी बर्थडे है, और उन्हें बहुत सा बधाई देते हुए ये कहना चाहूंगा कि हम सब स्टूडियो में उपस्थित है, और आपको बहुत बहुत सा बधाई सभी कोलेखा की ओर से।

कहते हैं ना मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लाइन है, आप जरूर सुने, इसे पसंद करेंगे, कि कभी तो की होगी सूरज ने, कभी तो की होगी सूरज ने चांद से मोहब्बत। सुनिए जी, कभी

सूरज में आग है। ये लाइन भी आप सुने, इसे आप भी खुश हो जाएंगे कि दिल में रह कर, कि दिल में रह कर दिल पर वार करते हो, दिल में रह कर दिल को पर वार करते हो, जानते हो कि उसमें तुम्हारा ही बसेरा है, कि दिल में तुम्हारा ही बसेरा है, फिर क्यों अपने घर को वीरान करते हो, क्यों

Who are Shaitan? फिल्म साधु और शैतान से सुने हमने ये सुंदर सा गीत महमूद के एक्ट की हुई है। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, सुनिए तो जी कि आंसू

बैठ कर सुझा लेना। बाद में मौका मिले या ना मिले, बस दिल पे ना लगा लेना, दिल पे ना लगा लेना। यहाँ से आपके लिए चुन कर रखी हूँ और आपको लेकर चलते हैं आशा भोसले जी की आवाज़ में रातों का राजा फिल्म से निकालेंगे।

हुंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारी साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 तक 7 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

آنچ کا زونگ ہے اور یہ ہے فلم کے نام ہے مس میری کی اور ہم جاتے ہیں.

0: to enjoy ever.
1: और ओ रात के मुसाफिर चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप इस जरूर सुना दे. हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योशा बहुत मस्त था ना. तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं. तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर क्या हो गया क्या नहीं होगा तो आओ चला जाए. और वो है आजा सनम.

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएंगे लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिनों बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नाइटिंग लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ जोंग है, और मूवी के नाम है मिस मैरी।

और ये मर्द बड़ी दिल जर्द भरी नच जे लता जी परमा श्री मोहम्मद रवि मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं, तो हम चलते हैं। कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है, क्योंकि क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है।

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली, झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग की ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मूवी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो मैं मुकेश की आवाज में

Power, the heart of the millions, Mukesh. मूवी के नाम है श्रीमान सत्यवती, जिसमें राज कपूर ने काम किया है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं शायर और शायरी की मूड में तो हम हैं दोस्तों, लेकिन आपको हम क्या क्या सुनाएंगे, क्या नहीं सुनाएंगे, कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक तरह नाम रहे जुबान पर, एक तरफ नाम रहे जुबान पर, और जैसे कि चांद रहे आसमान पर। हा, ये तो खूब है दोस्तों, एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर, ये जिंदगी है दोस्तों। कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतनी अच्छे लगते हो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर, मूवी के नाम है तकदीर, और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है, लेकिन यहां कुछ और बात है। परमाश्री मोहम्मद रफीर का गीत है।

बोलो राम बोलो बोतल में बंद जवानी।

पीछे दौड़ तो प्याले फेंक तो बोतल मेरे पीछे बोलो राम बोलो राम बोलो राम बो बो बो बोलो हाय बोतल में बंद जवानी।

0: बोलो बोतल में बंद जवानी फरमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरेगी तो आपको हम सुनाते हैं। तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर और ये है परमाश्री मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है अदालत। अदालत ही अदालत जिसमें जी प्रदीप इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में। और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।
1: इन हस

और जब दिन हसीन दिल हो जवान परमान श्री मोहम्मद रफी का सॉन्ग है तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी हो हम भी है तो कुछ प्यार के बात करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टैंड 1958 का परमा श्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

है तो चले आओ। तो इसके बाद हम चलते और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है। तो ये हम आपको सुनाते, किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया, यूं ही नहीं पूरा है, जाता है इक्ष्ट, जो किसी और को लेना है दोस्तों, दान इज्जत ऋषि को, दान मुझे वेल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को

और ओल्ड इन गोल्ड जो गीत होता है उसमें स्वाद बहुत ज्यादा है। हम चलते हैं एक गीत के ओर जिस फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमन का एक सुपरहिट फिल्म है जो आप इस गीत को जानते होंगे दोस्तों।

और दो लफ्जों की है ये कहानी। मूवी के नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमा ने इस फिल्म में काम किया है। गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों, और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा। आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुना दे, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुवारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दोस्तों, ओल्ड इन गोल्ड का प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं हमारे, तो यहां पर क्या है आओ सुना जाए ओल्ड इन गोल्ड का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बाहर प्रोग्राम है।

जनम ओल्ड एंड गोल्ड कांसोंग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारो हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एन महमूद इन गोवा अथवा सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहून के माध्यम से और यहां से सुनाते हैं।

0: ये गीत थी एक बहुत मशहूर गीत है, आओ सुना जाए ये क्या है। महेंद्र कपूर
1: न जाए।
0: नहीं दोस्तों,
1: आपको हमारी कसम लौट।
0: हेमंत कुमार।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नतिगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम, मस्त महीना, नैतिकी लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए, हम चाहते हैं माइती मुकेश की ओर की।

इन गोल्ड कजोंग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेलकर कलर दुपट्टा। आओ सुना जाए।

0: और उजले उजले बाल लाल टोपी।
1: तो कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

बदल न जाना मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं मूवी के नाम है राजा निघंटिन हंड्रेड एंड फाइव निकट का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और चरण फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आका याग्निक का ये जोंग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जो तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा शरबानू राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी का नाम है यहाँ पर बताई गई है इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत आओ सुना जाए।

पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरवानू अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ ही साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नहीं खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी। इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही दार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का, ये सॉन्ग सुपरहिट फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे। पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

ये शिपरजों थे साथ यार किशोर दादा, क्या सुनाते हैं एक दुएत के ओर हम लोग आज चला जाएं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकी लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है, नहीं बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

और छोटी सी उम्र में रोग तो लग जाते हैं हमारे दोस्तों, और जब रोग लग जाते हैं तो वो कभी नहीं, मूवी का नाम है बैराग छोटी सी उम्र में। और नाइटी जी लता जी का ये जोंग थे जिसमें दिलीप कुमार और शहरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शहरा बानू बहुत छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बिट जाएगा और 17 बस बाद में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर फिर एक बार चलते हैं।

खूबसूरत है हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: है
1: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

0: क्या नाम है?
1: आशिक।
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है, सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग निकटी होंद एंजेसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। और ये जिपर सॉन्ग है दोस्तों अनहिट फिल्म, जो ये गीत नीदरलैंड में बनाए गए हैं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

ओरमे पल दो पल का शायर रे शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहां से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

और तुम इस तरह से और मेरे जिंदगी में शामिल जरूर होना। तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

हाय जानी चमनी और तेरा गोरा गोरा बनन में क्या हलचल मच चुका है। ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिकर नाम है वक्त नहीं खतीन 165 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिंगेल नाइटिंगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

और हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निवर्रे तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए पदमा श्री मोहम्मद रफी और नई जी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरें अरे क्यों खफा हो गई हैं और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है

आपके प्यार में कभी कोई कवि न बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। दिल मेरी ना सुने, कैसा दिल है ये दोस्तों।

ये कैसी बात है, जब दिल मेरा नहीं सुनता तो मैं दिल को क्या करूं। कभी कभी हो जाता है कि दिल बस में नहीं रहता है। दोस्तों, रब मिल गया फिल्म का सॉन्ग है, मोहम्मद इरफान।

हम अकेले इसलिए रहते हैं, हम अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको सबकी तरह झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं।

दिल सच्चा और चेहरा झूठा दोस्तों, ये तो एक फिल्म था ना, और आप जानते हैं हकीकत में कभी कभी चेहरा अच्छा होता है, दिल झूठा होता है। फिर भी ये फिल्म सच्चा झूठा जो है, ये फिल्म मनमोहन देसाई ने तैयार किया, जब तो शशि कपूर को लिया इस फिल्म में काम करने को, लेकिन शशि कपूर ने पूछा मेरा साथ किसने मेरे साथ एक फिल्म में काम करेगा, तो महेंद्र देसाई ने कहा मुमताज आपके साथ इस फिल्म में काम करेगा, तो शशि कपूर ने कहा नहीं नहीं, दूसर एक्ट्रेस को ले लेना तो मैं इस फिल्म में काम करूँगा। तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कहा देखो शशि साहब, मैं दूसर डायरेक्टर बदल सकता हूँ, प्रोड्यूसर बदल सकता हूँ, गायक बदल सकता हूँ, मगर मैं मुमताज़ को नहीं बदलूँगा। तो जाकर रजेश खन्ना को लिया इस फिल्म में काम करने को दोस्तों, और रजेश खन्ना और मुमताज इस फिल्म बनाया और ये फिल्म एक हिट हुआ, एक जुबली हिट हुआ। तो शशि कपूर जब देखा कि ये फिल्म एक जुबली हिट हुआ तो शर्मिंदा हो गया और आगे चलकर फिर शशि कपूर मुमताज के साथ काम किया। इसी फिल्म का एक सॉन्ग सच्चा झूठा।

जीएस खन्ना और मुमताज का हिट फिल्म सच्चा झूठा कसम अभी आपने किशोरदा की आवाज में सुना। हर एक काम जो आपको रेडियो को शेयर कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से। नील सीफन तक 3 5 3 2 फिर सीफ पर आपको तार करना है।

ये लंबा लंबा गोरा गोरा अक्षय कुमार है दोस्तों, फिल्म रुस्तम का सॉन्ग जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया, अतीफ असलम और साथियों की आवाज़ में भी आपने सुना। फाह हिंदुस्तान रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे, प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है दोस्तों, राजन के साथ। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, झूठा ही सही, क्या बात है दोस्तों, वो भी सही बात है, चाहे झूठे झूठे फिर भी प्यार कीजिए। फिल्म चौनी मेरा नाम का सॉन्ग है जिसमें देवानंद हेमा मालिनी काम किया दोस्तों। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जब बना तो उस फिल्म में देवा और हेमा मालिनी भी था। इस फिल्म के बाद इन दोनों में प्यार हो गया, इन दोनों में प्यार हो गया और ताजमहल होटल में ये दोनों बैठ कर कुछ खा पी रहा था, तो वहाँ पर जाकर राज कपूर पहुँचा दोस्तों। राज कपूर थोड़ा से शराब पिया था और हेमा मालिनी के गाल छूने लगा वगैरह वगैरह, तो देवानंद गुस्से में आकर और हेमा को वहाँ पर छोड़कर और चला गया। ये भी होता रहता है।

शह छुटा ही सही फिर भी प्यार कीजिए, जिसका मुझे था इंतजार, फिल्म दोन का सम है जिसमें अमिताभ और सिन्नत अमन ने काम किया। दोस्तों फिल्म जिंदगी जिंदगी अपने पहले फिल्म जिंदगी जिंदगी के फ्लॉप होने के बाद 12 लाख कर्ज में डूबे हुए प्रोड्यूसर निर्मल ईरानी को सिन्नत अमन और अमिताभ बच्चन और चंद्र भारत ये सभी ने एक नई फिल्म बनाने को साथ देने का मौका दिया। और कहानी इस फिल्म में कोई पैसा नहीं लेंगे, तो ये तीनों ने कहा कि ये कोई पैसा नहीं लेंगे अगर ईरानी जी एक नई फिल्म तैयार करेगा। अपने दोस्तों के सलाह पे निर्मल जी ने फिल्म बनाने के तैयार हो गए। अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन ये दोनों ने कहा कि फिल्म में हम लोग काम करेंगे और एक चीज पैसा नहीं लेंगे। तो उसी समय में सालिम और जीवत ये दोनों के पास एक कहानी था, एक फिल्म था जिसने खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो ये कहानी कुछ दूसरा कहानी नहीं था, ये था हिट फिल्म डॉन। तो ये फिल्म

ये फिल्म ईरानी जी ने ले लिया और ये फिल्म जोर जार से तला दोस्तों, उसी साल का तीसरा हिट फिल्म निकला। ये फिल्म दोन जो था ये उस साल का तीसरी हिट फिल्म मिला और ये फिल्म 7 करोड़ 20 लाख रुपए कमाई थी। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रोड्यूसर कितना खुश होगा उस समय पर अमिताभ बच्चन और जीनत अमन दोनों के ऊपर। तो इसी तरह से ये फिल्म का गीत जो मैं पेश करता हूँ, इस फिल्म तैयार हुआ है।

हाँ यही तो प्यार है, दिल संभल जा सरा, दिल संभल जा सरा, फिर मोहब्बत करने चला। ये दिल जो है ये क्या संभलने वाला है, ये दिल जो है कभी नहीं मानता है और दिल भी कभी नहीं भरता है।

ये दिल को चाहे मनाओ ये कभी नहीं मानते हैं दोस्तों, छूकर मेरे मन को किया तूने किया इशारा, अमिताभ बच्चन का फिल्म है और अमिताभ बच्चन दोस्तों एक बड़ा स्टार है, आज तेलुगु फिल्म में काम करते हैं और कई तरह के प्रोग्राम उसका भी टेलीविजन पे रहता है। तो अमिताभ बच्चन का उम्र फिर तक यार इस दिन से बने रहो 11 अक्टूबर 1923 में इनका पैदाइश हुआ और उसी का फिल्म का एक सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ और फिल्म यराना है और फिल्म यराना का गीत है छूकर मेरे मन को, किशोरदा के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फा हॉन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। अक्षय कुमार और करीना कपूर या करीना खान दोनों ने काम किया है फिल्म एक दिल रुबा है। पद्मसी उरित्रा इनके आवाज़ में आप गीत को सुनेंगे, दिल करता है तुझे अपना बना लूँ।

ये दिल का कहानी दोस्तों, मैं दिल की कहानी नहीं लेके आया, मैं दिल का लय सभी ने बनाया, लेकिन हर एक गीत जो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो दिल आ जाता है। ये दिल पर क्या गुजरता है आप जानते हैं, और ये दिल जो है कभी नहीं मानते हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, ये दिल तो दिल है लेकिन कभी नहीं मानते, छोटा सा दिल है। जब प्यार हो जाता है तो चाहे प्यार मिट जाता है, लेकिन ये बात दिल में जाकर समा जाता है और हमेशा के लिए दिल में रहता है। ये दिल से कभी नहीं निकलता है, दिल तो है दिल।

दिल तो है, दिल दिल का एक बार क्या चीजे, हम यार है तुम्हारे अलका याग्निक उदित नारायण दोनों के आवाज में आप सुनेंगे। हाँ मैंने भी प्यार किया, फिल्म का नाम है ट्वीट।

एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच मिस्टर एंड मिसेस पेस्टन जी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेट्स गिव देम अ बिग हैंड।

0: सासों की जरूरत है आशिकी के लिए, ये आशिकी क्या होता है आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो कभी जब मैं शुक्रवार के प्रोग्राम करूँगा तो आप 4 और 5 के बीच तार करके और पूछ लीजिए, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आशिकी क्या है, क्या होता आपको मालूम है भैया जॉनी की आशिकी क्या है?
1: हाँ भैया, आशिकी बहुत खराब का बीमारी है।
0: पैरासीटामोल से अच्छा हुई,
1: पैरासीटामोल से अच्छा है भैया,
0: झाड़े के परी।
1: हाँ अब देखो भाई, ये द्वारका बीते हुए दिनों में सुरीनाम देश में एक लड़की दर्द तक यार के यही आशिकी के पर बाद में फंस के और अपन उतर जाए के कुरा थे जिस मक्का और वो तो ले आए के गिर गए पानी में, गिर ना गए सर मोड़ ब्रेक करी so. तो ही पता नहीं आशिकी भैया द्वारका जान ले रहे। तो आप कभी किया होगा कि अभी करते हो?
0: ये काम तो किसने नहीं किया, सबको ये काम किया,
1: किया नहीं हो जाता है।
0: वो जैसे जैसे तू बोले एक बीमारी है आज
1: का। हाँ वो बीमारी है। हाँ। लोग भाई नराजे, दुनिया पे लोग को एक चीज से बहुत डरना चाहिए और वो है प्यार करना।
0: या
1: प्यार बहुत अच्छा
0: है, प्यार हो जाता है,
1: प्यार हो जाता है।
0: या, या।
1: बोले प्यार किया नहीं जाता है।
0: भैया जोनी, थैंक यू वेल।

चार मिनट रह गया है 6 बजने में। प्रोग्राम यहाँ से मैं समाप्त करता हूँ, आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। मिस्टर जर्नी नंबर वन आ गया स्टूडियो में, बगल में बैठा है दोस्तों, और अभी उसका प्रोग्राम 6 बजे से आप सुनेंगे। खास करके जो न्यूज़ ब्रेक था आप जरूर सुनते रहना। वीकेंड है, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। खुशबू रहेगा, फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा, फिर मिलेगा आप सभी को एक सुहानी रात।

जय श्री राम। राम के अनन्य भक्तों, प्रभु प्रेमियों, प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके गोपाल परदेसी बाबा की तरफ से राम राम। नाना प्रकार के राम अवतारा, रामायण सबको किए अपारा। भक्तों, जिस प्रकार समय समय से राम के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कल्पों में और अलग अलग लोकों में दुनिया में भी विभिन्न प्रकार से रामचरित्र का वर्णन किया गया है। इसी कारण तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के करोड़ों भक्तों में से राम कथा के प्रसिद्ध रचयिता कौन है? तो भक्तों, भगवान शिव ने इसे रचकर माता पार्वती को सुनाया, फिर भगवान से सुनकर ये प्रसिद्ध कथा काकभुशुंडी जी ने अपने पक्षियों के समूह में बैठकर गरुड़ जी को सुनाया। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया। सर्वप्रथम इस कथा की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की, तत्पश्चात समय समय पर अलग अलग भाषाओं के महान कवियों ने इस कल्याणकारी गाथा को अपने अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने अपने ढंग से गाया। रामायण में सबसे अधिक मूल्यवान यानी विशेष बात यह है कि इस कथा में श्री राम का चरित्र एक आदर्श मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसी कारण ये कथा मानव को सच्ची राह दिखाती है। भक्तों, इस राम कथा के द्वारा किस प्रकार समस्त प्राणियों ने अपने अपने धर्म अर्थात अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते जा रहे हैं। प्रिय प्रभु प्रेमियों, ये महान गाथा संप्रदाय और जात पात को ना देखते हुए हर प्राणी की आत्मा को छूती है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से धरती के प्राणों में शक्ति प्रदान करती है, हर युग में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव तभी मनाया जा सकता है जब हमारे मन में प्रेम, सच्चाई और विश्वास हो। ये राम कथा रस गंगा जहां भी बही, सबने उसका स्वागत किया, फिर चाहे वो धरती का कोई भी कोना क्यों ना हो। सज्जनों, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए श्री राम के प्यारे भक्तों, शुभारंभ करते हैं रामायण का प्रथम कांड।

वंदनीय है। प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तगणों, कवियों के समाज में चंद्रमा के समान सुशोभित श्री तुलसीदास जी के अनुसार राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, अर्थात प्रभु श्री राम जी के लीलाओं की गाथा अत्यंत सुंदर है एवं प्राणी मात्र की प्रत्येक शंका का समाधान करती है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री राम से बड़ा और कोई नाम नहीं है और श्री राम के कथा से बढ़कर पुण्यदायिनी अन्य कथा नहीं है। आज आप और हम श्री रामायण के बाल कांड का रस स्वादन करेंगे।

शैल सुता पार्वती को जब तप करते हुए हजारों वर्ष बीत गए, तब आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब शिव जी पति रूप में अवश्य मिलेंगे। और भक्तों, उधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने भगवान शिव भोलेनाथ को पार्वती के साथ विवाह के लिए तैयार किया। इस प्रकार शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। अचानक पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे आदिदेव, हे प्राणनाथ, हे कृपा निधान, मुझे उस नाम का रहस्य बताइए जिसका आप सुमिरन आप

शिव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी वो कथा विस्तार से सुनाता हूँ जिसे काक मुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई थी। जगत प्रसिद्ध के कई देश में धर्म और नीति का पालन करने वाले प्रताप भानु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके भाई का नाम अरिमर्दन था एवं धर्म रुचि नाम का बुद्धिमान मंत्री भी था, परंतु विप्र समुदाय के श्रापवश उनको कुल समेत राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। ये तीनों ही क्रम से रावण, कुंभकरण एवं विभीषण के नाम से पुलत्स्य कुल में उत्पन्न हुए।

भगवान अग्नि देव ने यज्ञ से प्रसन्न होकर जो हविष्यान राजा को दिया था उसे खाकर तीनों रानियां कौशल्या, केकई एवं सुमित्रा गर्भवती हो गई। तीनों रानियां मन में बड़ी हर्षित हुई। भगवान जिस दिन से गर्भ में आए चहुं ओर हर्षोल्लास छा गया। इस प्रकार 9 माह बीत गए जब और वो समय आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। नक्षत्र योग लगन एवं वार सभी अनुकूल हो गए। पावन चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का अत्यंत प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न सर्दी थी न

ब्रह्म श्री रामचंद्र जी के अतिशय प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न के चूड़ाकरण नामकरण उपनयन आदि संस्कार विधिवत किए गए। भगवान श्री राम जी ने अनेक प्रकार की मनमोहक बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। एक बार माता कौशल्या ने बाल रूप श्री राम को पलने में सुलाकर पूजा घर में ठाकुर जी को भोग लगाया तो उन्होंने बालक श्री राम को वहां भोजन करते देखा। माता पलने के पास गए तो शिशि को पलने में सोता देखकर विस्मित रह गए। भक्तों, इस प्रकार अनेक लीलाएं करते हुए श्री राम जी सबको विस्मित करते

महाराज दशरथ ने मुनिवर विश्वामित्र के सन्मुख हाथ जोड़कर जैसे ही कहा कि मुनिवर, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, ये चार पुत्र मैंने वृद्धावस्था में बहुत प्रयत्न से पाए हैं, आप इन्हें छोड़कर चाहे जो मांग लीजिए, चाहे मेरे प्राण मांगो, मैं सहर्ष देने को तैयार हूं। तो तुरंत ही विश्वामित्र जी क्रोधित हो उठे और राजसभा से उठकर चल दिए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शांत किया और राजा को समझाया कि राजन, राम लखन को आप मुनिवर के साथ भेज दीजिए, राम लखन कोई साधारण बालक नहीं है।

प्रभु श्री राम तो पृथ्वी पर नर लीला रचाने और राक्षसों के विनाश हेतु अवतरित हुए थे। अतः उन्होंने मारीच की मायावी शक्तियों को देखकर उसे बिना फर का बाण मारकर लंका भेज दिया, ताकि सीता हरण के समय वहां स्वर्ण मृग बनकर काम आ सके। इसके पश्चात महामुनि विश्वामित्र के पास मिथिला के महाराज राजा जनक के यहां से सीता स्वयंवर का समाचार आया। मुनि विश्वामित्र ने श्री राम और लखन को साथ लेकर मिथिला के लिए चल दिए। मार्ग में अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, जो श्रापवश पत्थर बनी थी, भगवान की चरण कमल पड़ते ही नारी रूप होकर अपने पति गौतम ऋषि के लोक में चले।

श्री गंगा जी की पूजा अर्चना एवं स्नान करके मुनि विश्वामित्र आनंद कंठ भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी को साथ लिए जनकपुरी में पहुंचते हैं तथा वाटिका में ठहर जाते हैं। राजा जनक वाटिका में ही उनसे भेंट करने पहुंचते हैं। मंगल मूल श्री राम को देखकर जनक जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं तो मुनिवर श्री राम और लक्ष्मण का परिचय कराते हैं। लक्ष्मण के मन की बात जानकर प्रभु श्री राम गुरु जी से नगर भ्रमण की आज्ञा लेकर नगर के बाजारों में घूमकर आते हैं।

प्रभु राम के अनन्य भक्तों, राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजकुमार महादेव के धनुष पर प्रत्यांचा यानी धनुष की डोरी चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। और आज धनुष यज्ञ का वो पावन दिन आ गया है जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश देश से राजकुमार पधारे हैं। रावण और बानासुर जैसे योद्धा भी धनुष यज्ञ में आए। रंगभूमि की शोभा अवर्णनीय है। महाराजा जनक का मंत्री स्वयंवर में आए हुए राजाओं को राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनाई। और

राजा जनक की शोक एवं व्यंग भारी वाणी सुनकर शेष अवतार लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले, हे महाराज, सूर्यवंशी वीरों के होते हुए धरती को वीरों से खाली कहना अनुचित है। यदि भैया श्री राम जी आज्ञा दे तो मैं विध्यांचल पर्वत को फूंक मारकर मच्छर के समान उड़ा सकता हूं। इस धनुष की तो बात ही क्या। तो भक्तों, तब मुनि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत करके श्री राम जी को कहा कि हे पुत्र, तुम उठो और धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाकर जनक के शोक दूर करो और उनकी

बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र जी की जय जयकार से संपूर्ण ब्रह्मांड डोल उठा। नगर में बाजे बजने लगे। सज्जन लोग प्रसन्न एवं दुष्ट उदास हो गए। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। तभी शिव धनुष का टूटना सुनकर भगवान परशुराम जी रंग भूमि में आ पहुंचे। तन पर विभूति, विशाल ललाट पर त्रिपुंड, सिर पर जटा शोभायमान हो रही है। कांधे पर तरकस एवं एक हाथ में सुंदर फरसा धारण किए हुए हैं। सबने मुनिवर को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया एवं मुनि विश्वामित्र गले मिले। तब

ऋषि परशुराम का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता। जब श्री राम जी ने शीश झुकाकर हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा कि हे देव, हमारा सिर तो सदैव आप ही के चरणों में रहा है, आपके चरण हमने छाती पर लिए हैं, ये कहकर श्री राम जी ने परशुराम जी को उनके पूर्वज भृंग ऋषि जी का पद चिन्ह अपने हृदय पर दिखाया। तब परशुराम जी समझ गए कि ये तो स्वयं श्री नारायण है। तब उन्होंने बारंबार श्री रामचंद्र जी की वंदना की और तप करने के लिए वन की ओर चले गए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की।

प्रभु श्री राम जी के भक्त जनों, इस प्रकार श्री राम जी और जनक दुलारी सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। बारात जिस समय अयोध्या वापस आई तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया। माताओं ने सीता सहित चारों बहुओं की आरती उतारी, मंगल गान हुए। राजा ने बहुमूल्य हीरे मोती स्वर्ण गौ आदि दान किए। प्रभु प्रेमियों और श्री राम जी के भक्त जनों, जो भक्त प्रभु श्री राम जी के बाल चरित्र एवं विवाह गाएंगे अथवा सुनेंगे, उनके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद होगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बाल रूप श्री राम जी की जय।

प्रेमी भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल लीलाओं का प्रथम कांड जो बाल कांड के नाम से प्रसिद्ध है यहां समाप्त हुआ और अब आप दूसरा यानी अयोध्या कांड सुनिए।